0: दर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन
1: प्रसाद सेड एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू होल्ड प्रोटेस्ट और अदर प्रोग्राम्स एट जंतर मंतर मस्ट बी सबमिटेड एटलीस्ट 10 डेज इन एडवांस। मिस प्रसाद नोटेड दैट द सीजेपी हैड प्रीवियसली बीन ग्रांटेड परमिशन टू होल्ड अ प्रोटेस्ट एट द वेन्यू बट हैड फेल्ड टू कम्प्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस एंड द अंडरटेकिंग्स गिवन बाय द पार्टी।
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya

शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। श्री अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवी भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

0: এখন দিল্লি কেন্দ্রের সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ।
1: ইয়ম আকাশবাণী, সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম, প্রবাচিকা নিধিঃ ঝাঃ। अथ वार्ताः। पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर विधानसभासनयोः भाजपेति दलेन बृहत्मत व्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मधुरांतकम इति द्वे अपि विधानसभासने विजित्य नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। अपरञ्च पुदुचेरी राज्यस्य थट्टनचावडी आसने एआईएनआरसी दलं स्वकीयं आसनं सुरक्षितं कृतवत्। उपनिर्वाचन परिणामेषु भाजपा एनडीए गठबंधनस्य प्रचण्डं विजयं प्रशंसयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् एषः जनादेशः सुशासन नीतौ देशवासीनां अगाध विश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचन चक्रे पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीय क्षेत्रे च भाजपा दलेन, तमिलनाडु राज्ये तमिल अगवेत्री कशगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोक सुरक्षा चिन्तनात् पूर्व नियम निषेधात् च दिल्ली आरक्षी संस्थया जंतर मंतर क्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्यां शान्ति व्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ली आरक्षी प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानाम् अभावात् जंतर मंतर क्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं

0: क्रियन्ते। रांचीनगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं षड् कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला एकम् एकम् इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इन्दौरनगरे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट।
1: राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र के कथित लीक होने के संबंध में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR से शुरू हुआ था। बाद में ये मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधान सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कजगम TVK ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम के नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना हुई। इन 6 सीटों पर उपचुनाव मंगलवार को हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on health, nutrition,

10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले

0: स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाज नाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
4: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
3: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
5: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
3: कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
6: बिरसा मुंडा गांव गांव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना दयाल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
3: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम किरकेट्टा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री वितरण अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की

0: श्रृंखला में एक एक से बराबरी कर ली है।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI

0: their experiences and suggestions and urged them to become ambassadors of skill development.
1: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है. आपके पास क्या है कितनी डिग्रियां हैं उसका अपना महत्व है ही लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल. जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं.
0: The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचेता चैनल है। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन पा रहे हैं ये कार्यक्रम। हम उपलब्ध है न केवल आपके रेडियो सेट पर बल्कि न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, और साथ ही डीटीएच पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें बिना किसी ऐप, बिना रेडियो के सुनना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर हमारे चैनल का नाम टाइप करने से सीधे तौर पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आकाशवाणी कोलकाता संचेता लिखने से ही आप बिना किसी ऐप के, बिना डीटीएच के, बिना रेडियो के हमारे ये प्रसारण, हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। आज महालया है। इस पावन दिवस के उपलक्ष्य में आप सबकी मंगल कामना करते हुए आज का ये कार्यक्रम शुरू करूंगी। और ये वो दिन है, वो पुण्य पावन बेला है जिस दिन हम याद करते हैं उन लोगों को जो हमारे बीच आज नहीं है लेकिन जिनके जीवन से हमारा जीवन है, जिनके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। ये सर्व पितृ अमावस्या का दिन है और इस दिन पितृ पक्ष का समापन होता है। लोग अपने पूर्वजों को जल और भोजन अर्पण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसे तर्पण का नाम दिया गया है। इसके अलावा महालया की देश के इस भाग में, मुख्यतः इस पूर्वी भाग में एक अलग महत्व है। क्या है वो महत्व, इसके विषय में हम जरूर आगे कार्यक्रम में बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और

कैलाश से धरती पर आने वाली हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ के आगमन की सूचना देता है महालय, और कह सकते हैं कि एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है। महालया के दिन बस अब मन से, कर्म से, वचन से सब दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुट जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं और किसी काम में दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। और एकदम भोर में तड़के महिषासुर मर्दिनी को सुनते हुए, रेडियो पर, आकाशवाणी पर सुनते हुए सुबह 4 बजे मुझे एहसास है धीरे धीरे दिन का उजाला गगन पर छा रहा है और श्लोकों के माध्यम से, आगमुनि गीतों के माध्यम से जिस तरह का माहौल बनता है, लगता है कि अब ये जो आने वाले दिन है ये बस खुशियां लेकर आए, सबके जीवन में उजाला लेकर आए, उगते सूरज के साथ सब मिलकर अपने अपने घरों में, अपनी अपनी कम्युनिटीज में प्रार्थना करते हैं देवी माँ से कि अब की बार जब तुम आओगी तो अपने साथ सबके लिए खुशियां लेकर आना। इसके अलावा माँ दुर्गा की प्रतिमा के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही खास प्रथा का पालन होता है महालया के दिन। आजकल तो बारोवारी पूजा का चलन है, तो अभी आपने सड़कों पर देखा होगा बहुत सारी देवी प्रतिमाएं जो है वो अपने अपने पंडाल की तरफ रवाना हो चुकी हैं। लेकिन जिन घरों में, जिन कहते हैं ना वो विरासत में चली आ रही दुर्गा पूजा का एक जो चलन है, एक जो परंपरा है, ऐसे घरों में और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ देवी प्रतिमा को आज एक विशेष रूप दिया जाता है। क्या है वो, उसके बारे में मैं जरूर

अभी अभी आपने ये भक्ति गीत सुने लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार थे हृदयनाथ मंगेशकर और गीतकार इस गीत के पंडित नरेंद्र शर्मा। नौ बजकर 39 मिनट और 7 सेकंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय। आप सुन रहे हैं भाव प्रधान बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा। तो मैंने बताया आपको इस गीत के उस पार कि माँ देवी दुर्गा की प्रतिमा के साथ एक बड़ी ही खास प्रथा जुड़ी हुई है, महालया से जिसका संबंध है। महालया पर देवी दुर्गा की प्रतिमा में आंखें बनाने की ये अनोखी परंपरा है, चक्षुदान की परंपरा है। और इससे बहुत सारी ऐसी मान्यताएं जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर पुराने कुछ अगर दस

महालया के बजाय महासप्तमी के दिन की जाती थी, निभाई जाती थी। और समय के साथ साथ देवी पक्ष की जो शुरुआत है उसके प्रतीक के रूप में महालया का ये जो दिन है ये प्रचलित हुआ, और तब से चक्षुदान करने का ये जो चलन है ये लोकप्रिय हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथिला में महासप्तमी के दिन ही आज भी चक्षुदान की ये जो परंपरा है ये

लोकप्रिय हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथिला में महासप्तमी के दिन ही आज भी चक्षुदान की ये जो परंपरा है ये बरकरार है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में वर्णित कथा के अनुसार जब महिषासुर के अत्याचार से देवता परेशान हो गए तब ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अन्य देवताओं के तेज से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ और देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र

महाभारत की कथा है। जब महान योद्धा और दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें खाने के लिए भोजन के स्थान पर केवल सोना चांदी और गहने दिए गए। हैरान होकर कर्ण ने इंद्रदेव से इसकी वजह पूछी तो इंद्रदेव ने बताया कि हे कर्ण, तुमने जीवन भर केवल सोना और धन ही दान किया, तो अपने पूर्वजों को कभी अन्न या जल अर्पित नहीं किया। तो इस पर कर्ण ने उत्तर दिया कि उन्हें अपने असली माता पिता और पूर्वजों के बारे में कहां पता था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। तो कर्ण की इस विवशता को देखकर यमराज और इंद्र ने उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 15 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने उन 15 दिनों में अपने पितरों का स्मरण किया और पूरी श्रद्धा से उनके लिए अन्न जल का तर्पण किया। जिस दिन कर्ण ने यह कार्य पूरा किया वो अमावस्या का दिन था जिसे महालया कहा गया, और तभी से इन 15 दिनों को पितृपक्ष और अंतिम दिन को महालया अमावस्या के रूप में मनाया जाता है।

और देखते ही देखते हमारा जो ये समय साथ में बीत रहा था अपनी समाप्ति के कगार पर है। आज हमने भाव प्रधान बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा में बातें की महालया के बारे में, इस पुण्य दिवस की पावन बेला में। उम्मीद है कि अब तक आप सबने

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में

0: प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध
1: उनकी पैदाइश 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को चेन्नई हिंदुस्तान में हुई। उनका पूरा नाम रिस्पुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। वो अपनी कहानी ओनाविलों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इनकी मशहूर तसनीफ मालगोडी डेज, जी हाँ बचपन की याद ताज़ा हो गई ना, मालगोजी डेज, जिसमें हिंदुस्तानी माशरे की खूबसूरत अक्कासी की गई है। उनकी तहरीरों में सादगी, मज़ा और इंसानी जज्बात नुमाया हैं। उनकी यौम पैदाइश हमें उनकी अदबी खदमात याद करने का मौका फराहम करती है। उनका अदब आज भी कारीन के लिए मशाल राह है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि त्यौहार की शुरुआत हो गई है, छुट्टियां भी होने वाली हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में छुट्टियां हो गई हैं और इस त्यौहार की तो तैयारी हम लोग कई महीने से कई हफ्तों से कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम प्रेशर के दरमियान इतमें जहनी सेहत यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो कि हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों में जहनी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करना है। जिस तरह जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, इसी तरह जहनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ भी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। जहनी दबाव, प्रेशर्स, परेशानी और तन्हाई इंसान को कमज़ोर कर सकती हैं। हमें चाहिए कि अपने जज्बात दूसरों से बांटें, ज़रूरत पड़ने पर माहिरीन से मदद लें और दूसरों की बात तवज्जो से सुनें। याद रखिए, जहनी सेहत का ख्याल रखना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि अगर हम जहनी तौर पर मजबूत मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, तो फिर हम हर खुशी को वेलकम कर पाते हैं और हर दुख को टाटा बाय बाय कर पाते हैं। इत्तेफाक से देखिए, आज यौम डाक डे यानी नेशनल पोस्ट डे भी है। डाक का निज़ाम हमारे माशरे में रबते का एक अहम जरिया है। डाक यानी ख़त, ख़त यानी रबता यानी कम्युनिकेशन। एक ज़माना था जब लोग अपने प्यारों के खतूत का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। डाकियाँ खुशियों, मोहब्बतों और अहम खबरों का पैगाम लेकर घर घर पहुँचता था। आज डिजिटल दौर में ईमेल और मोबाइल ने रबते को आसान बना दिया है, लेकिन डाक की अहमियत अब भी बरकरार है। पार्सल, सरकारी दस्तावेजात और दीगर ज़रूरी खदमात में महकमा डाक का अहम किरदार रहता है। आइए डाक के निज़ाम और डाक के कारकुनों की खदमात को खराज तहसीन पेश करें। बस आज आईना में इतना ही कुछ, और अब चलिए हम लोग सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा अनु मलिक की मौसीकी के साथ, कुमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ों में फिल्म विजयपथ से।

जिस तरह वक्त पंख लगा कर उड़ता है ना, तेजी से भागा जाता है ना, उसी तरह कुछ लोग भी हमें यूं छोड़ करना चले जाते हैं कि जिनका जाना लगता है कि वो एक शख्स नहीं था, वो एक अहद था, वो एक इंसान नहीं था, बल्कि शायद वो हम सब में, आप में, मुझ में, सब में बसने वाला वो एक तहरीक थे, माशरे में नफ़रत, नाइंसाफ़ी और तफरीक को जन्म देती है। हिंदुस्तानी आईने छूतछात को ख़त्म करने के लिए कानून तहफ़ फ्राहम किया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने रवैयों में तब्दीली लाएँ, हर इंसान को इज्जत दें, मसावात को फ़रोग दें। मौज़े सामीन, आलमी योम असाज़ा यानी वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि 15 अक्टूबर को मनाया गया, 2026 5 अक्टूबर को भी ये दिन भारतीय असाज़ा की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया गया। उस्ताद हमारी ज़िंदगी में अहम मकाम रखते हैं, वो हमें इल्म, अखलाक और नज़्म व ज़ब्त सिखाते हैं। असाज़ा की मेहनत से तलबा कामयाबी हासिल करते हैं और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेते हैं। इस दिन तलबा अपने असाज़ा को मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी खिदमत को सराहते हैं। हमें हमेशा अपने असाज़ा की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि असाज़ा

हूँ को पूजा जो कि अब शुरू हो चुका है कि बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने प्यारों को याद कीजिए, अपने अजीज़ों को याद कीजिए, अपने मरहूम को याद कीजिए और साथ जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल ज़रूरी है। तो आज मौज़े सामिन शहरनामा में बस इतने ही मौज़ूआत। हम अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत जो आपके दिल को छुएंगे, जो आपके जहन को झिझोड़ेंगे, जो आपको लुत्फ भी पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं जहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नगमा, फिल्म जीत से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, शायरी समीर की, जिसे मौसिकी से सजाया है नदीम श्रवण ने।

तो आइए स्वागत करते हैं दुर्गा पूजा का।

या आपका है और क्या मेरा। तो चलिए सुनते हैं फिर से फिल्म वेलकम का ये नगमा।

experience heard. Real voices, real change. आज नेशनल पोस्ट डे भी है। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस से ठीक एक दिन बाद आता है। ये दिन हमारे जीवन, संचार, बैंकिंग सेवाओं और सुदूर ग्रामीण इलाकों को जोड़ने में भारतीय डाक विभाग के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। इंडिया पोस्ट आज दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क्स में से एक है, जिसके देश भर में 1.5 लाख से अधिक डाकघर हैं। एनजेन पोस्ट ऑफिस और जन सेवा कनेक्ट पोस्ट ऑफिस जैसी पहलों के माध्यम से विभाग आधुनिक और समावेशी सेवा केंद्र का निर्माण कर रहा है, जो आम नागरिकों की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और इसके साथ ही डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म डाक सेवाओं को सुलभ और उपयोग में आसान बना रहे हैं। आज महालया है। महालया पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और इसी दिन दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत भी मानी जाती है, देवी पक्ष की शुरुआत मानी जाती है। महालया अमावस्या, या जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, पितृपक्ष का समापन दिवस है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को तर्पण और भोजन अर्पित कर विदा करते हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती, वो भी इस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का एक साथ श्राद्ध कर सकते हैं। बंगाल में और देश के अन्य हिस्सों में भी आज भोर लोगों ने हर वर्ष की तरह ब्रह्म मुहूर्त में आकाशवाणी पर महिषासुर मर्दिनी भी सुना है।

सुन रहे हैं आप दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। चर्चा है कि अंतर्गत अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार आर के नारायण की। अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक थे आर के नारायण। उनकी कहानियां अक्सर परंपरा और आधुनिकता के टकराव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारतीय पारिवारिक जीवन की गतिशीलता जैसे विषयों को उजागर करती हैं। उनकी शैली में सौम्य हास्य और सौम्य व्यंग और साथ ही सरलता झलकती है। अग्रणी भारतीय उपन्यासकारों मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ मिलकर नारायण ने भारतीय साहित्य में उपन्यास को एक विधा के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। जहां आनंद ने सामाजिक यथार्थवाद पर ध्यान लगाया और राव ने अपनी

रचनाओं में दार्शनिक गहराई का संचार किया। वहीं नारायण ने भारत के आम लोगों के जीवन को चित्रित करने के लिए सरल, हास्यपूर्ण और बेहद ही मनोरंजक गद्य का प्रयोग किया। अपनी दादी द्वारा पाली पोसे गए रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी ने 1930 में मैसूर के महाराजा कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आर के नारायण उपनाम से लेखन कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आपके छोटे भाई आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने कई रचनाओं का चित्रण किया, इलस्ट्रेशन किया और इनमें शामिल हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में ये उपन्यास छपकर आया और उसके बाद द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, 1943 में मालगुड़ी डेज और द गाइड इन 1958। कुल मिलाकर नारायण ने 34 उपन्यास लिखे थे। पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स स्कूली लड़कों के एक समूह के कारनामों का वर्णन करने वाला एक धारावाहिक उपन्यास है और यहाँ वो जो काल्पनिक शहर मालगुड़ी है उससे पाठकों का परिचय होता है और औपनिवेशिक भारत में बचपन की खुशियों और कठिनाइयों को दर्शाता है। ये एक बहुत ही अहम कृति आर के नारायण की और मालगुड़ी जहां नारायण ने अपने अधिकांश उपन्यासों की पृष्ठभूमि रखी भारतीय साहित्यिक इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गया। पाठकों को ऐसा लगता कि मानो वो इस शहर से परिचित हों, जानते हों और ये उनके बचपन के मद्रास और उनके बाद के जीवन के मैसूर के जो जगहें थी, जो लोग थे, उनसे काफी मिलता जुलता था। 1965 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता विजय आनंद द्वारा द गाइड का फिल्मी रूपांतरण किया गया और इसमें हमने देवानंद और वहीदा रहमान को देखा था, उन्होंने साथ में अभिनय किया था और ये भारतीय सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म बनी। उपन्यास के जटिल विषयों के चित्रण के लिए इसे व्यापक प्रशंसा मिली और टीवी श्रृंखला मालगुड़ी डेज को हम कैसे भूल सकते हैं। नारायण की लघु कहानियों पर आधारित थी ये टीवी सीरीज और भारत में ये एक कल्ट टीवी सीरीज बन गई और इस तरह जो नई पीढ़ी है पाठकों की, रीडर्स की, उनमें भी आर के नारायण की रचनाएं पॉपुलर हुई, लोकप्रिय हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और बेंसन मेडल से आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जयंती पर हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पहला पड़ाव कार्यक्रम का हमने पार कर लिया। चर्चा है कि अंतर्गत आज हमने बात की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में, साथ ही हमने नेशनल पोस्ट डे का जिक्र किया, महालया की बात की और आर के नारायण की जयंती के उपलक्ष्य में उनके विषय में हमने चंद बातें आपके साथ साझा की। और दूसरा जो पड़ाव है सुरभि का, उसे हम पहल के नाम से जानते हैं, उसके लिए थोड़ी देर बाद मैं लौटूंगी आप सबके लिए गाइड फिल्म का ये गाना।

सुरभि का ये दूसरा पड़ाव पहल, जिसका नाम है हम बात करेंगे पीएम विकास ट्रेडिशनल ट्रेनिंग के बारे में। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना के अंतर्गत पारंपरिक प्रशिक्षण यानी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक और पारंपरिक कारीगर समुदायों की कला, शिल्प और पारंपरिक कौशलों को बढ़ावा देना और उन्हें आधुनिक बाजार से जोड़ना है। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय MoME द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे स्किल इंडिया मिशन और स्किल इंडिया पोर्टल के साथ एकीकृत करके लागू किया जा रहा है। इसके तहत पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और कलाकृतियों से जुड़े कारीगरों को NSQF यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। पारंपरिक हुनर को डिजिटल और आधुनिक बाजार के अनुकूल बनाने के लिए विशेष कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप्स का आयोजन भी किया जाता है। इसमें उत्पाद डिजाइन यानी प्रोडक्ट डिजाइन, पैकेजिंग, ई कॉमर्स, मार्केटिंग और निर्यात यानी एक्सपोर्ट से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि कारीगर अपने उत्पादों को ऑनलाइन और वैश्विक स्तर पर बेच सके। तो श्रोताओं, आज दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि में पहल के अंतर्गत हमने बात की पीएम विकास ट्रेडिशनल ट्रेनिंग के बारे में, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है, मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन पा रहे हैं ये प्रसारण और हमारा ये कार्यक्रम। कल फिर दोपहर 12 बजे हम लेकर आएंगे सुरभि। तब तक के लिए आप लोग सुनते रहें, साथ रहें आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
1: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: श्री चौहान ने उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल, असम, पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत मिली है। इससे पहले राजस्थान और त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट है, देश का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी साझा करेंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सोमवार को अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये खेल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विरासत संरक्षण और खेल के माध्यम से जन सहयोग को बढ़ावा देंगी। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पुरुषों का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Delhi police has made extensive security arrangements in the New Delhi area to ensure public safety in view of the call for protest at Jantar Mantar by the CJP today. Police personnel are deployed at multiple checkpoints in New Delhi district. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed till 6 this evening. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station. Namo Bharat train services between Sarai Kale Khan and New Ashok Nagar Namo Bharat stations in Delhi will also remain closed till 10 p.m. today. BJP National President Nitin Naveen alleged that opposition parties are making efforts to create instability in the country and acting at the behest of foreign forces. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Naveen accused opposition parties of attempting to create a highly dangerous and serious situation in the country. He added that Indian democracy possesses immense strength and the people of the country would unite to thwart any such attempts.
4: Over the past 12 years, under the leadership of the Prime Minister, we have steered the country out of an atmosphere of fear and endeavored to eradicate terrorism and Naxalism from their very root. Yet there are still individuals with an urban Naxal mindset who are intent on destabilizing the nation. The youth of India are deeply connected to the Indian culture and democracy and are committed to the Indian constitution. The way you are attempting to challenge the country's constitutional framework and its democracy and the insulting language you employ against individuals holding the nation highest officers will never be accepted by India's 140 crore citizens and you will certainly face the consequences.
3: The Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan alleged that the opposition is weakening constitutional institutions and breaking people's faith in democracy. The Union Minister claimed that all this is being done with the support of foreign powers. Addressing a press conference in Bhopal today, Mr. Chauhan said the opposition is unable to win in the field or win the people's trust, so it is trying to spread chaos on the streets. Defence Minister Rajnath Singh today attended key events of the multinational air exercise Tarang Shakti at Air Force Station Jodhpur in Rajasthan. During his visit, the Defence Minister interacted with personnel from the Indian Air Force and participating foreign air forces. He also witnessed an impressive aerial display of modern fighter aircraft and inspected an exhibition showcasing indigenous and foreign combat aircraft. The multinational exercise brings together air forces from different countries to demonstrate their operational capabilities, advanced aviation technologies, and military coordination. India has warned Pakistan that it will not be deterred by nuclear threats and will deliver a fitting response to any terrorist attack. India's senior advisor to the permanent mission to the UN Conference on Disarmament in Geneva, Anmol Sherbedi, made the remarks while speaking at the United Nations General Assembly's first committee meeting in New York yesterday. He said India would make no distinction between those who sponsor terrorism and those who mastermind it. Mahalaya, marking the advent of goddess Durga, is being observed today. The occasion signifies the end of Pitrupaksh, dedicated to ancestors, and the beginning of Devi Paksh, the auspicious fortnight preceding Durga Puja. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the people on the occasion in a social media post. Mr. Modi prayed that the blessings of Ma Durga bring happiness, compassion and hope to society. The Prime Minister also hoped that peace and prosperity prevails all around. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir for the day. IMD said conditions are becoming favourable for further withdrawal of the southwest monsoon from some more parts of eastern India and northern peninsula and many parts of northeast India during the next 2 to 3 days. In men's cricket, India will face the West Indies in the third T20 international.

0: मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं, जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक

0: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारे साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
4: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की

0: मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियात जांच की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण करने के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
1: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं, जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा है कि हाल के उपचुनाव में पार्टी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने के इच्छुक लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपने चुनावी हार की भरपाई के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक

संस्थाओं की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति की वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। रूस द्वारा यूक्रेन के जाउपीरिजिया क्षेत्र में किए गए हवाई हमलों में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये हमले का अमेरिका से रूस से डीजल खरीदने के समझौते की घोषणा के ठीक एक दिन बाद हुआ। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस कदम से रूस को युद्ध के लिए वित्तीय मदद मिल सकती है। सरकार ने उस लेख का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि लेख में ऑपरेशन की प्रकृति और क्रियान्वयन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। इकाई ने मीडिया संगठनों को सलाह दी है कि वे सत्यापित जानकारी का उपयोग करें। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजना से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने पीएम राहत योजना का उल्लेख किया। इसके अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वाले लोगों को 25,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाता है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार भी मिलता है। फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमोघाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इसमें भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। सुनेंगे कार्यक्रम उर्वशी। 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आपके साथ हूं मैं संचिता। रेखा की अदाओं में जादू हजार, हर नजर में चमके रूप का निखार, खामोशी की जिनकी कहती है कहानी, वो है मोहिनी रेखा, अद्भुत और रूहानी। तो आइए सजाएं।

यादों की महफिल रेखा के रंगों से महके हर दिल। आप सभी का स्वागत है मोहिनी उर्वशी के अंतर्गत। आज कार्यक्रम आधारित है जादू बिखेरती हुई रेखा पर। शुरुआत करेंगे जिस गीत के साथ, वो है घर। लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार ने लिखा गीत को, आरडी बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया।

5:27 आप जुड़े हुए जिस कार्यक्रम के साथ वो है उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी। आज हम बात कर रहे हैं रेखा के बारे में। हिंदी सिनेमा में इनका पहला कदम, रेखा की हिंदी फिल्मी जो शुरुआत, करियर की शुरुआत हम सावन भादो से है 1970 में हुई, जिसमें उन्होंने, उनके साथ नवीन निश्चल थे, और लेकिन उनका अभिनय सफर इससे पहले ही शुरू हो चुका था। उन्होंने बचपन में दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम किया। रेखा की शुरुआती जो फिल्मों में तेलुगु फिल्म थी, अम्मा कोसम भी शामिल थी। यानी जिस कलाकार को हिंदी सिनेमा ने पहचान दी, उसका अभिनय से रिश्ता बचपन से ही जुड़ चुका था। रेखा ने एक साक्षात्कार में बताया कि जब वो सावन भादो के लिए निर्देशक मोहन सहगल से मिली थी, तब उन्हें हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती थी। निर्देशक के सवालों पर उनका जवाब बार बार नहीं होता था। बाद में उन्होंने भाषा सीखने और अपने अभिनय को निखारने पर बहुत मेहनत की, और सफर हमें बताता है उनका ये कि असफलता हमेशा शुरुआत से मिली प्रतिभा का परिणाम नहीं होती। सीखने की इच्छा और लगातार मेहनत भी कलाकार को नई पहचान दे सकती है। रेखा के करियर में 1978 की फिल्म घर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अभी अभी आपने गीत सुना। इस फिल्म में उन्होंने आरती का किरदार निभाया, जो भावनात्मक रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इसी दौर में मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्म ने भी उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। इस भूमिकाओं ने दर्शकों को दिखाया कि रेखा केवल आकर्षक व्यक्तित्व वाली अभिनेत्री नहीं, बल्कि गंभीर और संवेदनशील किरदारों को भी प्रभावशाली ढंग से निभाने की क्षमता रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी फिल्म के एक गीत के साथ। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है आवाज, प्रकाश मेहरा ने गीत के बोल लिखे और कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: ভোরের আকাশ, মহিষাসুর মর্দিনীর সুর, দেবীপক্ষে মা দুর্গার আগমনীর আলো। আহা, শক্তির সে কি অপরূপ সৌন্দর্য! কিন্তু দেবী কি শুধু মণ্ডপেই থাকেন? তিনি তো আমাদের রোজকার জীবনে, মায়ের নির্ভরতার হাতে, বোনের সাহস জোগানো কথায়, স্ত্রীর নীরব ভরসায় আর কন্যার নতুন স্বপ্নে। তবে শুধু এই সম্পর্কগুলোতেই নয়, তার নিজেরও একটা জগৎ আছে, নিজের স্বপ্ন সত্যি করার সেই অদম্য জেদ, কাজের জায়গায় তার আত্মবিশ্বাস, আর হাজার বাধা সত্ত্বেও নিজের পরিচয়ে মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলার আনন্দ। এই নিজস্বতাতেও তিনি যেন একাই দশভুজা। এই প্রতিদিনের দেবীদের জানাই শ্রদ্ধা, তাদের অসামান্য শক্তি আমাদেরও শক্তি হয়ে উঠুক। পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে আমি আবির চট্টোপাধ্যায় সবাইকে জানাই দুর্গাপুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা। পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স, যা কিছু শুভ।
1: आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है और आप जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं वो है उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी 297.6 मीटर था 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। मोहिनी में आज हम बात कर रहे हैं अदाकारा रेखा के बारे में। जब रेखा का नाम लिया जाता है तो अक्सर उमराव जान की नजाकत याद आती है, लेकिन खूबसूरत ये एक फिल्म है, 1980 में आई थी। उन्होंने अपनी हास्य प्रतिभा भी दिखाई ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में। उनकी भूमिका मंजू दयाल की थी। इस अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला और ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने दर्शकों को अपनी अदाकारी के अलग अलग रंग दिखाए, कभी गंभीर, कभी भावुक, तो कभी खिलखिलाती हुई रेखा। यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें विशिष्ट बनाती है। आज है 10 अक्टूबर, हम मना रहे हैं उनका जन्मदिन। 1981 की फिल्म उमराव जान रेखा के करियर की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में गिनी जाती है। मुजफ्फर अली के निर्देशन में उन्होंने अमीरन यानी कि उमराव जान

रान का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उनकी अदाकारी में शायरी, संगीत, नृत्य और पात्र की भावनात्मक दुनिया का सुंदर मेल दिखाई दिया। इस फिल्म ने रेखा की छवि को एक नई ऊंचाई दी और हिंदी सिनेमा में उनकी कलात्मक उपलब्धियों को एक स्थायी पहचान भी प्रदान की। आशा भोसले की आवाज शहरयार के बोल को खय्याम साहब ने संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम उमराव जान। 5:37 आप जुड़े हुए कार्यक्रम मोहिनी के साथ, आपके साथ हूं मैं संचिता।

0: এমাসে বিদ্যুতের বিলটা এত কম,
1: কমবেই তো। আমাদের ছাদে বসেছে সোলার প্যানেল, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুভ বিজলি যোজনায়।
0: তার মানে এখন থেকে বিল কমই আসবে আর পরিবেশও থাকবে ভালো।
1: হ্যাঁ, সঙ্গে সরকারি ভর্তুকি সর্বোচ্চ 78,000 টাকা। এছাড়াও রয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত গ্রাহকদের জন্য রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ভর্তুকি 5,000 থেকে 15,000 টাকা।
0: আজই আবেদন করুন pmsuryaghar.gov.in পোর্টালে।
1: আপনার পাশে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর তথা WBSEDCL।
2: उर्वशी के अंतर्गत कार्यक्रम मोहिनी 5:43 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ। हम बात कर रहे हैं रेखा के बारे में। यश चोपड़ा की सिलसिला अपने संगीत, काव्यात्मक अंदाज और खूबसूरत दृश्यों के लिए याद की जाती है। रेखा और अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए गीतों ने फिल्म की लोकप्रियता में खास योगदान दिया। रेखा एक देखा एक ख्वाब की अगर बात करें और ये कहाँ आ गए हम जैसे गीत रोमांटिक हिंदी फिल्म संगीत की चर्चित प्रस्तुतियों में शामिल है, हम सभी जानते हैं। रेखा की स्क्रीन प्रेजेंस और फिल्म की जो काव्यात्मक शैली ने इन गीतों को एक अलग आकर्षण बना दिया जो कई पीढ़ियों के दर्शकों को पसंद आता है। रेखा के व्यावसायिक मनोरंजन तक अपने अभिनय को सीमित नहीं रखा। कलयुग या फिर विजेता, उत्सव, यहाँ तक कि आस्था जैसे फिल्मों में उनकी भागीदारी ने उनके करियर के दूसरे पहलू को सामने रखा। विशेष रूप से उत्सव की अगर बात करें या आस्था की बात करें, 1984 की उत्सव शास्त्रीय और पारंपरिक परिवेश की झलक देखने को मिलती है। इनका गीत मन क्यों बहका या फिर अपनी मधुरता और नृत्यात्मक प्रस्तुति के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। रेखा अलग अलग विषयों और सिनेमाई शैली के साथ प्रयोग करने के लिए भी जानी जाती है। आगे बढ़ेंगे जिस गीत के साथ सिलसिला फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़। जावेद अख्तर के बोल को शिव हरि ने संगीतबद्ध किया। पांच 5:45 आप जुड़े हुए कार्यक्रम उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी। हम बात कर रहे हैं रेखा के बारे में। आज उनका जन्मदिन है

0: वाकई एक ख्वाब लगता है, एक सिलसिला। इनके करियर के ग्राफ को अगर देखें तो ऐसा ही लगता है रेखा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये भारत के प्रमुख नागरिक सम्मानों में से एक है। दशकों लंबे करियर में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक एक परिवेश और गंभीर नाटकीय भूमिकाओं के साथ अपने करियर की गाथा लिखी। उनका सफर केवल लोकप्रियता की कहानी नहीं बल्कि बदलते दौर के साथ अपने अभिनय को एक नया रूप देने की कहानी भी है। आखिरी गीत, लेकिन उससे पहले
1: বিলটা এত কম
2: কমবেই তো আমাদের ছাদে বসেছে সোলার প্যানেল প্রধানমন্ত্রী সূর্যকর মুফত বিজলি যোজনায়
1: তার মানে এখন থেকে বিল কমই আসবে আর পরিবেশও থাকবে ভালো
2: হ্যাঁ সঙ্গে সরকারি ভর্তুকি সর্বোচ্চ 78,000 টাকা এছাড়াও রয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত গ্রাহকদের জন্য রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ভর্তুকি 5,000 থেকে 15,000 টাকা
1: আজই আবেদন করুন pmsuryaghar.gov.in পোর্টালে
2: আপনার পাশে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর তথা WBSEDCL
0: आखिरी गीत है फिल्म रामपुर का लक्ष्मण लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे गीत के बोल और राहुल देव बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया अगले कार्यक्रम का इंतजार करें और सुनते रहिए इस गीत को

0: Stay tuned for the news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। जन्तरमन्तरस्थले विरोधसमाह्वानेषु दिल्लीआरक्षिबलेन प्रवर्तिता सुदृढ़ सुरक्षाव्यवस्था। अनेके संदिग्धाः निरुद्धाः। राष्ट्रियराजधान्यां रेल मेट्रो सेवाः च आंशिकतया प्रभाविताः। संवैधानिक संस्थानां दुर्बलीकरणस्य, लोकतंत्रे च जनविश्वासभंजनस्य विपक्षोपरि भाजपा दलेन आक्षिप्तः गभीरारोपः। प्रतिवेशु देशेषु वैश्विक सुरक्षा समीकरणेषु च भारतस्य सूक्ष्म दृष्टिः। आत्मनिर्भर भारत संकल्पेन सशस्त्र सेना बलानि महारूपांतरणं प्राप्नुवन्तीति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः। संयुक्तराष्ट्र सभायां पाकिस्तानाय भारतस्य दृढ़ प्रत्युत्तरम्। उक्तञ्च यत् जम्मू कश्मीरं वर्तते भारतस्य अभिन्नम् अंगम्। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीरेषु अतिवृष्टेः व्यंजितं पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य जन्तरमन्तरस्थले सीजेपीति समूहस्य विरोध प्रदर्शनस्य आह्वानं वीक्ष्य दिल्लीआरक्षिबलेन नवदिल्लीक्षेत्रे व्यापक सुरक्षा प्रबन्धाः विहिताः, येन जनसुरक्षा शान्ति व्यवस्था च बाधिता न भवेत्। वार्ताहरैः सह सम्भाषणे दिल्ली आरक्षी उपायुक्तः कुमाराभिषेकः अवोचत् यत् क्षेत्रे लोकव्यवस्थायाः अक्षुण्णतायै बहुषु स्थलेषु आरक्षिबलानां निक्षेपः कृतः। सः सूचितवान् यत् नवदिल्लीमण्डले पूर्वोपायरूपेण सघन अन्वेषणप्रक्रिया प्रचलति, अथ च अद्यतने विरोधप्रदर्शने भागं ग्रहीतुं यतमानाः कतिपयजनाः पूर्वमेव निरुद्धाः। अपरतश्च यातायातारक्षि उपायुक्तः विकासकुमारः न्यरूपयत् यत् नवदिल्लीक्षेत्रे यातायातनियमनस्य कारणात् दैनिकयात्रिकाणां सौविध्याय वैकल्पिकमार्गाणां व्यवस्था क्रियते, येन जनसामान्यस्य गमनागमने कोऽपि व्याघातः न स्यात्। भारतीयजनतादलस्य राष्ट्राध्यक्षेण नितिननवीनेन अद्य विपक्षिदलानामुपरि देशे अस्थिरताम् उत्पादयितुम् अथ च विदेशीयशक्तीनां संकेतेन कार्यं विधातुं गभीरः आरोपः विहितः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणे श्रीनवीनेन विपक्षिदलानामुपरि आक्षेपः कृतः यत्ते देशे अतीवसङ्कटमयीं गभीरां च स्थितिं निर्मातुं प्रयतन्ते। सः अग्रे प्रत्यपादयत् यत् विपक्षिदलैः संविधानस्य नाम्नि मिथ्याप्रचारं कृत्वा जनमतस्य अपमाननं विधीयते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् भारतम् आधुनिकयुद्धकलायाम् अथ च वैश्विकसुरक्षाव्यवस्थायां सम्भूयमानान् द्रुतपरिवर्तनान् सूक्ष्मतया निरीक्षते। अद्य जोधपुरवायुसेनाकेन्द्रे 26,000 तरङ्गशक्ति इति युद्धाभ्यासं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री अवोचत् यत् पूर्वप्रतिष्ठिता विश्वव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। अपरत्र उदीयमानायाः नूतनवैश्विकव्यवस्थायाः स्वरूपम् एतावतापि अनिश्चितं वर्तते।
1: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
2: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: अद्य महालय पर्व 16

0: On World Mental Health Day, we believe that stories can heal, that listening can save lives, that there can be miracles when you believe and when someone believes in you. That's all we have for you in this Saturday evening's edition of Western Music. If today feels heavy, please talk to someone. You are not a burden. Your voice matters. Your lived experience can be someone else's hope. Stay tuned for the news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। इस बीच नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाने दिया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया है। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम तथा राजनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अदिस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए

भारत के प्रयासों का स्मरण किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने यात्रा के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। ये हमला कैप्टन स्मिथ पर किया गया था। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान की कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर ने साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि PM राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत की विरासत, संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार, और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज की जो चर्चा है वो है भारत की विरासत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और भारत के आत्मविश्वास के बारे में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार निहारिका, और हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि बाला, सीनियर इंडोलॉजिस्ट, डीन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी भारतीय विद्या भवन, और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहले हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हम अक्सर किसी भी सभ्यता को किताबों से, तारीखों से, इतिहास के माध्यम से या स्मारकों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन संग्रहालय, उत्सव या विश्वविद्यालय एक नया तरीका है हमारी विरासत के करीब आने का, उसे समझने का और उसे वास्तव में अनुभव करने का। आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो भारत की विरासत के प्रति दृष्टिकोण किस तरह बदल रहा है और ये आम नागरिक के और करीब किस तरह आ रही है। डॉक्टर सच्चिदानंद, पहले आपसे शुरुआत करते हैं।
2: देखिए, क्या है संस्कृति को हमारे देश में जो समझने का तरीका रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी जीवन का ऐसा एक अविभाज्य अंग रहा है प्रारंभ से ही, जो लगातार समय के साथ साथ अपने आप को और परिष्कृत करती गई है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है नित्य नूतन चिर पुरातन, इस बात को कहा जाता है। तो हर बार उसमें एक न एक परिष्कार होता है, एवोल्यूशन होता है। तो अभी जैसे ही पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि संस्कृति को जानने और समझने का एक जो पूरा का पूरा नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल गया है, और किस तरह से संस्कृति हमारे चिंतन की मुख्य धारा में आ रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में भी संस्कृति को लेकर जो जागृति है, जो प्रेरणा है, वो और अधिक बढ़ गई है। चाहे फिर वो हमारे सिर्फ म्यूजियम्स ही नहीं है, म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, हमारी लाइब्रेरीज हैं, हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और इतना ही नहीं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सबको भी देखने का एक नजरिया अभी पिछले कुछ समय में एकदम बदला है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग आजकल, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो सोशल मीडिया पर संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने ग्रंथों की बात कर रहे हैं, अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो एक अलग तरह के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
1: और शायद मनोरंजन के तौर पे भी लोग और तरीके ढूंढने लगे हैं अपनी सभ्यता के और करीब आने के।
2: जी जी, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हम देखते हैं कि जहां भी कहीं संस्कृति पर कोई कुठाराघात होता है या हमारी शाश्वत मान्यताओं पे जब कभी कोई कुठाराघात होता है, तो लोग ही इसका प्रतिकार करते हैं।

0: समाज ही इसका प्रतिकार करता है। इसलिए देखा गया कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, फिर वो चाहे हमारी परंपराओं की हों, हमारे मेलों की हों, व्रत की हों, त्योहारों की हो, अनुष्ठानों की हो, उनको लेकर एक सकारात्मक भाव, क्योंकि लोगों ने ये भी समझा कि इनके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है और इसके पीछे फैक्ट्स कैसे रहे, तो हमारे ग्रंथों से कैसे वो सारी चीजें आई। तो ये कुल मिला के संस्कृति को देखने का एक नया नजरिया, नवोन्मेष एक तरह से कहा जा सकता है।
1: डॉक्टर शशि, इसमें मैं एक विचार और जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल OTT के माध्यम से कई कहानियां हमारी सभ्यता से जुड़ी सामने आ रही हैं। आप अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करेंगे इस बारे में?
2: OTT के माध्यम से बहुत कुछ सामने आ रहा है, परंतु बहुत कुछ नहीं भी आ पा रहा। भारत में एक नई चेतना आई, उसके कई कारण है। जैसे कि जोशी जी ने कहा कि एक नवोन्मेष है, परंतु ये आप निश्चित समझ लीजिए कि क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हम कहते हैं प्रतिक्षण जो एक नए नए वस्तुओं को अपने में संजो रही है, परिवर्तित भी हो रही है, परंतु हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी अस्मिता, भारत की आत्मा, भारत की पहचान उसकी संस्कृति है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, और भारत की संस्कृति विलक्षण इसलिए है, क्यों? क्योंकि वो ऋषियों मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर है। जो उसकी अंतरधारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आप बाह्य देखते हैं उसमें परिवर्तन होता है। पिछले दिनों हमारे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में कुछ ये चर्चाएं, कुछ बच्चों को शिक्षण में कुछ ये ऐड किया गया कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर आइए, आप भारतीय ज्ञान परंपराओं की ओर ध्यान दीजिए। तो दूसरी ओर मैं ये देख रही हूँ कि जब हमारे देश के लोग बाहर अब अधिक जाने लगे, पहले भी जाते थे परंतु अब अधिक जाने लगे, फिर देखने लगे भारत का कितना सम्मान है, क्यों है, कहाँ कहाँ हमारी संस्कृति बिखरी पड़ी है, लोग छोटी छोटी बातें भी देखते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। अरे इंडोनेशिया में रामायण है जी। अरे इंडोनेशिया में, थाईलैंड में रामायण है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जब उन्हें पता चलती हैं तो उनको एक स्वाभिमान जागृत होता है। दूसरा, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए यूरोप यात्रा पे, तो जब आइसलैंड आदि में गए वो लोग, तो वहां पर एक शब्द आया संबंध, कि आपकी भाषा में भी है, हमारी भाषा में भी है, तो लोगों में एक चेतना आई। जैसे कि हजारों शब्द सारी यूरोपियन भाषाओं में संस्कृत के बिखरे पड़े हैं, तो जब ये चर्चा के विषय बनते हैं। दूसरा, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इतिहास के विषय में बहुत सी कहानियां आपने सुननी होंगी, तो युवा वर्ग उस ओर आकर्षित होने लगा, जाने लगा, तो एक उनमें क्रांति आ रही है। फिर भारतीयों ने बहुत अपमान सहा, जहां भी जाते थे हम, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉलोनाइज्ड है, इतनी दास मानसिकता हो गई थी कि हम लोग सोचते थे जो बाहर है, जो विदेश में है, वही अच्छा है। परंतु जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ा पिछले 10-12 वर्षों में, जो भारत का सम्मान बढ़ा, वैसे वैसे भारतीयता का सम्मान बढ़ा, भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा, और जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ता है तो हमारी युवा पीढ़ी को स्वाभिमान की अनुभूति होती है, आत्मविश्वास जागता है, फिर उनको पता चलता है कि अच्छा ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने विश्व को इतना ज्ञान दिया, तो उनके और आत्म गौरव की अनुभूति होती है। तो बहुत सारे कारण है, मैं कहना चाहूंगी, जिनके कारण से आज भारत में एक आपको क्रांति का सा, क्रांति नहीं कह सकते परंतु उसके जैसा क्योंकि मन बदले हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्योंकि केवल मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आप कितना रहेंगे, उनको इतने मन ठीक करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए इतनी टेंशन है, उससे रिलैक्सेशन के लिए तो वो योग पर जाते हैं, ध्यान पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनको कहीं उसकी अनुभूति होती है, तो उन्हें शांति मिलती है। आज का व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, पैसा बहुत हो गया लोगों के पास, पर शांति कहीं खो गई।
1: यानी संस्कृति और सभ्यता एक नया कारण बन गई है आत्मविश्वास और शांति के लिए। आत्मविश्वास की बात करेंगे, इन दोनों उत्तरों में बहुत ही खूबसूरत बातें निकल के आई, लेकिन पहले हम आत्मविश्वास की चर्चा कर लेते हैं। हम अक्सर सांस्कृतिक आत्मविश्वास की जब बात करते हैं तो उसकी क्या परिभाषा होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो परिभाषा किस तरह आपको बदलती हुई नजर आ रही है? और इसमें एक विचार हम और ये जोड़ सकते हैं कि जितना सम्मान हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देंगे, शायद वैश्विक स्तर पर उतना ही सम्मान और लोग भी इसे देंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद, आपका क्या कहना है इस बारे में?
0: आपने बड़ी अच्छी बात कही, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, इसकी जड़ें कहाँ हैं, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश हुकूमत ने ये सोचा कि हम भारत पर कैसे हम पूरा राज कर सकते हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से महसूस हुई कि यहाँ इस

0: इसकी सांस्कृतिक जड़ें, जैसा भी प्रोफेसर शशि बालाजी भी बता रही थी कि सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनका लोगों का विश्वास डिगाना बहुत कठिन है। संस्कृति की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसलिए बार बार हम किसका नाम लेते हैं, लॉर्ड मैकाले का नाम लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने इस बात को समझा और इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया। उसमें उन्होंने कहा ही ये कि भारतीयों को अगर किसी तरह से जीतना है तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें उनकी सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करें, उनके सांस्कृतिक आत्मविश्वास को डिगाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में तो उर्दू और संस्कृत में जो ग्रंथ हैं वो तो ब्रिटेन में यूरोप की किसी भी एक बड़ी लाइब्रेरी की एक कोने में समा जाएं, इतनी उनकी वर्थ है, इतना ही उनका मूल्य है। जिस तरह के न्यूनता बोध से शुरू किया, फिर उन्होंने जो हमारी हर एक चीज में कहा कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना आपके मान्यताओं में कोई लॉजिक है, ना आपकी परंपराओं में लॉजिक है, ना आपके शास्त्रों में लॉजिक है। ये सारी चीजें हमारी पीढ़ी के अंदर, तत्कालीन पीढ़ी के अंदर डालना शुरू किया, वहां से न्यूनता बोध प्रारंभ हुआ। तो ये जो इस समय का काल है जब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, आपने देखा होगा आजादी के बाद भी कई वर्षों तक भारतीय ज्ञान परंपरा की उस तरह से बात नहीं की गई।
1: बिल्कुल,
0: ये आप देख रहे हैं कि पिछले 12-14 साल में लगातार ऐसा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शोध हो रहे हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से बातें लोगों के सामने ला रहे हैं। तो यानी क्या हुआ कि ये समझ में आया कि जो बातें हमको न्यूनता बोध दिलाती थी अनावश्यक रूप से, ये समझ में आया कि नहीं, उन सबके पीछे तर्क था, उन सबके पीछे शास्त्र था, उन सबके पीछे विज्ञान था, और इसलिए ये सारी बातें फिर से लौट के आई। यही है जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जिसकी आप बात कर रहे हैं।
1: यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगी कि किसी भी संस्कृति की पहचान होती है उसकी भाषा और उसकी कहानियां, और कहानियों को सामने लाने का एक माध्यम होता है संग्रहालय। पिछले कुछ सालों में जैसे आपने जिक्र किया कि कई तरीके से कई सारी कहानियां, कई सारे शास्त्रों की बातें सामने आई है, और उसमें से दो महत्वपूर्ण ऐसे संग्रहालय है जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और जैसे जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, यानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। और संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो संग्रहालय एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कितना महत्वपूर्ण जरिया है आपके नजरिए से?
0: पहले तो इस बात को समझना होगा कि भारतीय संस्कृति एक अलग तरह की संस्कृति थी। हमारे जैसे मंदिर हैं, मठ हैं या और भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर भी हम समाज की जो एक कलेक्टिव मेमोरी है उसको हम संग्रहित करके रखते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी कई बार उत्कीर्ण बहुत सारे शिलालेख होते थे, बहुत सुंदर से म्यूरल्स बनाए जाते थे, ये भी एक तरह का संग्रहालय था। लेकिन जब ये संग्रहालय शास्त्र हमारे समाज में आया तब से हमने संग्रहालय को भी बहुत अच्छी तरह से अंगीकृत किया। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई जिसमें हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की। भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका जीवन कैसा था, उनका संघर्ष कैसा था, उन्होंने अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया, इसका पूरा का पूरा दस्तावेज उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलता है। न सिर्फ दस्तावेज मिलता है, आपको उसके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करने का, संवाद करने का भी अवसर मिलता है,
1: और शायद इतिहास को एक नए नजरिए से परखने
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर। और आप उनके साथ जब संवाद करते हैं तो आप उनके साथ एक अपना एक जीवंत संपर्क बनाते हैं। तो कई लोग उससे अचंभित भी होते हैं कि अरे इनके बारे में तो मुझे ये मालूम ही नहीं था, इनके बारे में तो मैंने ये जानकारी ही नहीं ली थी। तो अपने आप में वो एक प्रधानमंत्री संग्रहालय उस तरह से परिपूर्ण हुआ। दूसरा, ये जो आपने कहा जनजातीय हमारे जो गौरव थे उनके आधार पर जो संग्रहालय बनाना, क्योंकि क्या हुआ कि जब स्वाधीनता संग्राम की बात आई तो फिर कुछ गिने चुने लोगों को ही स्वाधीनता संग्राम का श्रेय दिया जाने लगा, हम ये भूल गए। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा था कि हम इसमें ऐसे गुमनाम या जो भुला दिए गए उन तमाम योद्धाओं को भी याद करने का प्रयास करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक तरह का एक आंदोलन हो गया कि हम ढूंढे हमारे ऐसे कौन कौन से योद्धा थे। अभी आप जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं, ये जो हमारा मानपुर का विद्रोह है उसको कोई जानता ही नहीं था, उसमें 1500 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो बातें आई तो इसलिए उनके जीवन पर एक गौरव गाथा उनकी मालूम पड़े, इसलिए हमारे देश में जनजातीय संग्रहालयों की ये जो योजना बनाई गई, इन तमाम योद्धाओं की जीवन गाथाएं वहां पर आए, लोग समझें कि कहां कहां किस किस क्षेत्र में हमारे किस किस महान योद्धा ने काम किया। तीसरा, एक बहुत बड़ा संग्रहालय जो अभी बनने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वो है युग युगीन भारत, जो कि संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।
1: अगर हम मंदिरों की बात करें तो काशी, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उज्जैन, केदारनाथ, आज के जमाने में ये तीर्थ स्थान है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इकोलॉजी

0: एनर्जी का एक रूप है, ये कंजर्वेशन का एक रूप है, ये अर्बन डेवलपमेंट का भी एक रूप है। इन सब चीजों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है और ये हमारी संस्कृति के लिए कितने आवश्यक है।
1: हमारे यहाँ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, हमारे यहाँ धर्मोदय और ज्ञानोदय दोनों का स्थान होता था। मंदिरों के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता था, उनके साथ शिक्षा व्यवस्थाएं भी होती थी, उनके साथ धर्म ग्रंथ भी जोड़े जाते थे, उनके साथ विद्वान जुड़े हुए होते थे, बहुत कुछ होता था, समाज कल्याण के भी काम होते थे। और समाज कल्याण जो है वो हमारे धर्म का आधार था, आज भी है। हम लोग दान और तप त्याग जो भारत की संस्कृति का भाग है वो किसी देश में नहीं है। तो मंदिर जो होते हैं, आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगी तो आप देखेंगी कि बहुत कुछ उत्कीर्ण है परंतु उसको डीकोड करने की भी आवश्यकता है। तो जितने भी म्यूजियम हमारे हैं उनको और अधिक एक्टिवेट किया जाना चाहिए, ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश का जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ दिल्ली में ही जनपद पर है, बहुत कुछ एक्टिवेट करने की और ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमें अपने संग्रहालयों को और अधिक पुष्ट करने की और अधिक ज्ञान से प्राणवंत करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो देश की आवश्यकता है। हम केवल ऐसा नहीं कि एक म्यूजियम में आप गए, आपने ये मूर्तियां देखी, ये पेंटिंग्स देखी, उसका आपने एक फिजिकल रूप देखा और फिजिकली समझ लिया, नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, आध्यात्मिकता है, दर्शन है, ज्ञान है। मूर्ति कोई एक सुंदर वैसे ही कोई पीस ऑफ आर्ट नहीं है, इट्स नॉट मेड बाय कनोइजर्स ओनली। कहीं किसी मूर्ति में आपको नाम नहीं मिलेगा स्कल्प्टर का, किसी मंदिर में नहीं मिलेगा कि स्कल्प्टर कौन था, वो मूर्तिकार
0: जी
1: जो प्राणवंत कर देते थे और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, फिर भक्तों को उससे शक्ति मिलती थी। तो मंदिर है, ये सब कुछ हमारी देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जापान में एक को नोबेल प्राइज मिला है फास्टिंग पर, ईटिंग द सेल्फ या कुछ करके कुछ टाइटल था। हमारे यहाँ व्रत उपवास की परंपरा इतनी प्राचीन है पर हम उसका साइंटिफिक रीजंस, उसका हमारे शरीर को क्या लाभ होगा उसको हम नहीं बता पा रहे हैं,
0: शायद वो कहीं खो के रह गए हैं।
1: खोए नहीं है, उनको हमें पुनः एक ऐसे पटल पर लाने की आवश्यकता है जहाँ दुनिया देखे। जैसे मैं एक रूसी सहेली से बात कर रही थी एकादशी के विषय में, बता रही थी, शी सेड बट आई फास्ट ऑन एकादशी, तो शी वाज सो हैप्पी, बहुत उसको प्रसन्नता हुई बताने में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत भक्त हैं, भारत के मित्र हैं, भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, और अधिक से अधिक यदि हम अपनी संस्कृति के विषय में लोगों को जागृत करें, उनकी इच्छा है वो करना चाहिए।
0: यहाँ मुझे अंग्रेजी की एक बहुत खूबसूरत कहावत याद आ रही है, कहा जाता है एजुकेशन इज दैट विच कंपेल्स यू टू थिंक नॉट मेयरली द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। शब्द शायद थोड़े इधर उधर होंगे लेकिन ले दे के बात एक ही है कि आगे की पीढ़ियों को एजुकेट करने की जरूरत है। उसका एक माध्यम हो गया मंदिर, एक माध्यम हो गया संग्रहालय, और एक माध्यम और है विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थित है और दुनिया भर के विद्वानों को विद्वान बनाने में नालंदा का किसी ना किसी तरह से योगदान रहा है। आज फिर एक बार नालंदा की चर्चा उठती है जब हम संस्कृति की बात करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद, आपके विचार मैं इस पे जानना चाहूंगी।
2: हम जानते हैं कि जब प्राचीन भारत के समय में भारत के विश्वविद्यालय ऐसे हुआ करते थे जहां पूरे विश्व से लोग आते थे, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे वल्लभी हो, चाहे उज्जैनी हो, तमाम विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग आए, उन्होंने पढ़ाई की और बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, कहीं 20,000 कहीं 50,000 इस तरह के वहां पर विद्यार्थी हुआ करते थे। और जब आप आज भी नालंदा के वो खंडहर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये इतना विस्तृत, इतना बड़ा परिसर इसी विश्वविद्यालय का होगा, यानी कितने सारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते होंगे, किस किस तरह की यहाँ पर शिक्षा ली जाती होगी। तो ये हमारी जो हमारे ज्ञान परंपरा का ये वैभव रहा है। लेकिन ये भी सोचा गया कि जब हम हर बार बात करेंगे तो क्या हम हर बार नालंदा के खंडहर ही दिखाएंगे क्या आधुनिक भारत में, या सिर्फ हम बख्तियार खिलजी को ही कोसते रहेंगे कि उन्होंने ये सारा विध्वंस किया, या हम कुछ नवनिर्माण भी करना चाहते, ज्ञान के नए केंद्र भी खोलना चाहते हैं, ऐसे केंद्र जहां पर ज्ञान की नई नई विधाओं का विस्तार हो, नई नई बातें वहां पर हो, नई नई चर्चाएं वहां हो। इसलिए आपने देखा कि आज जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है वो अपने आप में एक नया विश्व के लिए एक नया प्रतिमान बना है, एक अपने आप में एक अपना एक स्टैंडर्ड उसने स्थापित कर दिया कि ऐसी वास्तु, ऐसा भव्य परिसर, ऐसी सुंदर वहां सुविधाएं कि वहां कोई भी शोधार्थी, कोई भी ज्ञानार्जन के लिए गया हुआ व्यक्ति अपने आप को उसके साथ जोड़ सके, उस पूरे परिसर की, उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसका जो स्पंदन है, उसके साथ वो जोड़ सके। इसलिए वो पूरा विश्वविद्यालय उस तरह से है। और वहां पे फिर

0: नए नए विषयों के ऊपर शोध, नए नए विषयों के ऊपर नवाचार, ये सारी बातें वहां हो रही। और सिर्फ नालंदा का ही विषय नहीं है, देश में आज IITs की संख्या कितनी हो गई। आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ 5 या 6 IITs हुआ करते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी संख्या बहुत सीमित थी। आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत सीमित संख्या में हुआ करते थे। आज देश में कितने सारे IITs खुल गए हैं, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, कितने एम्स खुल गए हैं, इसके साथ ही आईसर, सोशल साइंस रिसर्च और साइंस रिसर्च, इस पर भी पढ़ाई करवाने के लिए संस्थान खुल गए हैं, जहां वहां पे एक नई तरह की पढ़ाई हो रही है। टेक्नोलॉजी के लिए IIIT कितने सारे खुल गए हैं, ताकि टेक्नोलॉजी की बात हो और श्रेष्ठतम बातों के ऊपर चर्चा हो, आधुनिकतम ज्ञान की चर्चा हो। कौन था, आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 15 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि भारत सेमीकंडक्टर की फील्ड में जाएगा, अपने चिप का निर्माण करेगा। कब सोचा था हमने कि भारत अपने चिप का निर्माण करेगा? आज आप जानते हैं 140 करोड़ का हमारा देश है। सबसे बड़ी लड़ाई पूरे विश्व में आज जो हो रही है वो डिजिटल डेटा की हो रही है। डेटा पे जिसका प्रभुत्व होगा वो पूरे विश्व पर राज करने वाला है, हम आप सब देखते हैं। तो आज भारत ने ये सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम अगर सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे, चिप बनाएंगे, तो डेटा हमारा होगा, डेटा पर प्रभुत्व हमारा होगा, तो फिर हम पर कोई राज नहीं कर सकता, फिर हम दुनिया पर राज करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो एक शिक्षा का एक, ये जो एक नवाचार है, इसको सोचने की जरूरत है। सिर्फ विश्वविद्यालय खोलना नहीं, विश्वविद्यालयों में कौन सा ज्ञान दिया जाएगा, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक तरह से सारे ज्ञान का अमलगमीशन कराती है। भारतीय ज्ञान परंपरा भी है और आधुनिकतम ज्ञान भी है, दोनों को साथ लेके चलती है। वहां आपको संस्कृति का ज्ञान भी है, वहां पर विज्ञान का भी ज्ञान है। तो जिस तरह से भारत की पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जहां पर हम एक संपूर्ण विकास, विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की बात करते थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हम उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को पाना चाहते हैं। इसलिए हम हमारे शैक्षणिक संस्थानों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।
1: मेरा ख्याल है हर विषय को एक जगह मिल गई है हमारे विश्वविद्यालयों में, जो कि पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, पहले भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की शिक्षा दी जाती थी, चाहे कोई भी राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, एक, क्योंकि अगर एक किंगडम किसी को चलाना है उसे हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए।
0: नहीं, वैसा ही नहीं है। देखिए कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म हो गया। पहले अगर कोई बच्चा या बच्ची मेडिसिन का कोर्स कर रहा है तो फिर उसको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो संगीत का एक ऑप्शनल ले ले या विजुअल आर्ट का कोई ऑप्शनल ले ले। आज ये सुविधा है ना कि सिर्फ आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, आप सिर्फ मेडिसिन के विद्यार्थी नहीं है, आप संगीत भी सीख रहे हैं, आप विजुअल आर्ट भी सीख रहे हैं, आप सिरेमिक्स भी सीख रहे हैं, आप सिर्फ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नहीं है, आपको लगता है तो आप थोड़ा सा साहित्य का भी पढ़ रहे हैं कुछ तो भी। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपकी सारी ज्ञान की जो चक्षु हैं, ज्ञान की जो सारी दिशाएं हैं, वो खुली रहना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात है। आज भारत के पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हैं और ये युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप भी जानते हैं कि अगर ये युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे, तो ये पूरे विश्व पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। तो इसलिए उन युवाओं को श्रेष्ठतम अवसर प्राप्त हों, ये बात हमने जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सोची और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर नए नए कोर्सेज की बात करके, नवाचार की बात करके उनको इस दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: एक सवाल मेरा आप दोनों से है और वो ये है, रण उत्सव जैसे उत्सव जो हैं वो जीवन संस्कृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगर मैं अपने देश के बाकी राज्यों की भाषाओं को, उनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करूं या फिर केवल समझने की कोशिश करूं, क्या वो मुझमें राष्ट्रीय जुड़ाव की एक अधिक भावना जागरूक कर सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल। भारत में ये देखा जाता है, हम लोग भारतीय जहाँ भी जाते हैं कहते हैं मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिल हूँ, परंतु हम सब भारतीय हैं, ये विलक्षण बात है। उसके पीछे बहुत सारा आधार है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, संपूर्ण भारत ज्ञान, संस्कृति और बहुत सारे संस्कृति के आयाम उनके माध्यम से एक हैं। स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, हम लोग बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, अनेक उत्सवों का उदाहरण आपको दिया जा सकता है। तो भारत कभी भी बटा हुआ नहीं था और भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है, उसका ज्ञान है, जिसके आधार पर भारत भारत है। और मैं तो एक बात और कहती हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं अरे इंडिया कहा या भारत कहा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कहती नहीं। फिर आज हम केवल नालंदा, तक्षशिला, उदयपुरी, विक्रमशिला इत्यादि थोड़े से जो हमें पता है उन विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, परंतु आप थोड़ा सा इतिहास के पन्ने उलट कर देखिए कि भारत में जो विज्ञान था, जो वैज्ञानिक दिए, वो किसने दिए? वो आश्रमों और गुरुकुलों।

0: ने दिए। जब अंग्रेज आए, ये तो हमारी प्राचीन परंपराएं रही, अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम खत्म किया। उस समय पूरा भारत 100% शिक्षित था, आज हम कहते हैं प्रतिशत ढूंढते हैं कितना भारत कितने प्रतिशत शिक्षित है, तो एक सारी व्यवस्था जो है उसको बदल दिया गया। आज हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और उसकी बहुत सारी बातें चर्चाएं करते हैं, परंतु गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था तो पहले उसका पूरा टेस्ट लिया जाता था। हम कहते हैं द्विज, जो विद्यार्थी होता था उसको कुछ समय आचार्य केवल अपने मन में रखता था कि ये इसके अंदर क्या योग्यता है और यथा योग्यता के अनुसार मुझे इसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो वो उस समय था, आज भारत में उसके लिए हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो उस समय की व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई या समाप्त कर दी गई, कुछ भी कह सकते हैं। तो भारत का वैज्ञानिक योगदान हमारे गुरुकुलों और आश्रमों से भी आया है। विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, गुरुकुल और आश्रमों की हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। आज यदि हमें अपने बच्चे को गुरुकुल के आश्रम में भेजना है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, परंतु उस व्यवस्था के प्रति हमारे मन में आदर तभी आएगा जब हम उनके इतिहास के विषय में जानेंगे।
1: ये जो आपने भाषा की बात कही उसमें मैं दो चीजें जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि वो आज की चर्चा के लिए शायद वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये विचार आया माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में।
2: मैं इसी का जिक्र करने वाली थी, पहले हम कहा करते थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।
1: नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया उसमें, देखिए कि उन्होंने युग्म बनाए, दो दो राज्यों के युग्म बनाए। अगर आप गुजरात हैं तो गुजरात के साथ पांडिचेरी है, पश्चिम बंगाल है तो उसके साथ तमिलनाडु, यानी क्या किया कि इन प्रांतों के बीच में आपस में मेलजोल बढ़े, इन प्रांतों के लोग आपस में मिले, एक दूसरे के साथ बात करें, संवाद करें, कार्यक्रम आयोजित करें, तो उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जानने की बात होगी। फिर काशी तमिल संगम प्रारंभ किया। ये काशी तमिल संगम अपने आप में एक बहुत ही अभिनव योजना थी, क्योंकि जैसा तीर्थ यात्रा के लिए तमिलनाडु के लोगों का काशी आना या काशी के लोगों का तमिलनाडु या अन्य दक्षिण प्रांतों में जाना एक आम बात थी, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति को जानना, एक दूसरे की परंपराओं को जानना, साथ में रहकर उत्सव मनाना, ये पिछले कुछ सालों से काशी तमिल संगम के रूप में काशी में प्रारंभ किया गया और उसमें इतनी अपार सफलता मिली, बहुत सारी बातें लोगों को काशी तमिल संगम के माध्यम से सीखने को मिली। अभी एक और नवाचार हुआ है, अलग अलग राज्यों के जो लोक भवन है जहां पर माननीय राज्यपाल रहते हैं, अब वो राज्यपाल उस राज्य के जो राज्य दिवस होते हैं उनको अपने लोक भवन में मनाते हैं। ये अच्छा। कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि केरल के माननीय राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश दिवस है, तो केरल के राज्यपाल अपने लोक भवन में मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे और उस दिन मध्य प्रदेश का खान पान, मध्य प्रदेश की परंपराएं, मध्य प्रदेश का गीत, ये सब होगा। यानी केरल के लोगों को मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानने समझने का अवसर मिलेगा या पंजाब के। तो इस तरह से ये अलग अलग नवाचार करके देश को एकता के सूत्र में फिर से मजबूती से बांधे रखना, या तीन भाषा का अभी जो एक सूत्र आया है जिसमें तीन भाषाएं पढ़ना विद्यार्थी को अनिवार्य है, उसके आधार पर वो विद्यार्थी अपनी एक मातृभाषा भी ले सकता है, एक अन्य भारतीय भाषा भी ले सकता है, इसके आधार पर पढ़ाई करेगा विद्यार्थी, या मातृभाषा में शिक्षा भी, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की तो मातृभाषा में शिक्षा करना, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं, मेडिकल के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं। यानी आप देखिए कि हम कहां से कहां सोच है, इस बारे में विचार करना चाहिए था कि अब हमने अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया है।
3: एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है।
2: जी, और इसी में एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी, प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि द बेसिस ऑफ लिटरेचर इज लाइफ। सो जैसा हम जीवन को परखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, वैसा ही हमारा साहित्य होगा। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसकी कड़ी और कई विचारों से और शब्दों से जोड़ी जा सकती है। पहला सवाल जो है वो पीपल्स पद्मा पर है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि पीपल्स पद्मा लोगों का ध्यान केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों से हटाकर उन लोगों की ओर ले जाता है जो समुदाय में

0: चुपचाप महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा विचार ये है कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है तो उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है और इसे किस तरह हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं?
1: देखिए, पीपल्स पद्मा की जो बात आपने कही, अभी तक ये जो राष्ट्रीय अलंकरण होते थे, चाहे वो हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो थे, ऐसा लोगों को लगता था कि एक निश्चित अभिजात वर्ग के लोगों तक ही वो सीमित थे, क्योंकि उनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो भी बहुत पारदर्शी नहीं थी। और फिर जो लोग चुने जाते थे, बहुत बार ये धारणा होती थी कि अच्छा, इनको तो मिलना ही था क्योंकि ये एक उस अभिजात वर्ग से आते हैं। तो ये एक सामान्य लोगों से बिल्कुल कट के ये राष्ट्रीय अलंकरण रह गए थे। इसका जब से लोकतांत्रिकरण हुआ, आवेदन मंगाए जाने लगे, पोर्टल पे आवेदन आने लगे, और लोगों से कहा गया कि आप अपना आवेदन ऐसे व्यक्ति का भी नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्होंने समाज के क्षेत्र में कुछ किया है। और ऐसे में हमने देखा कि ऐसे ऐसे समाज के क्षेत्र के लोग जो अपने कहीं दूर किसी अंचल में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, जैसे बीज बचाने का काम करने वाली कोई हमारी माई हैं जो हमारे मौलिक बीजों को बचा रही हैं कृषि के लिए, ताकि हमारी जो मौलिक फसल है वो आगे जिंदा रहे। या कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल अपने सीमित संसाधनों से एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं, मतलब किसी को पेंशन मिली है, वो पूरी की पूरी पेंशन झोंक के पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। या कोई है जो हमारी पारंपरिक दवाइयों को अपने खर्चे पे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंची। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना जब शुरू किया गया और खोजा गया कि भाई ऐसे लोग जिनके पास कई बार पैर में पहनने की चप्पल तक नहीं है, वो लोग अपने पूरा का पूरा जीवन दूसरे के उत्कर्ष में लगा रहे हैं, तो क्या ये अच्छे देश का ये कर्तव्य नहीं कि हम उनको सम्मानित करें, हम उनको जनता के प्रकाश में लाएं कि जनता देखे उनको कि ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। तो ये पीपल्स पद्मा की जो अवधारणा आई, और इसकी प्रक्रिया में हमने देखा कि एक ऐसा व्यापक समुदाय जुड़ा और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हाँ, ये हैं हमारे सही हीरोज, ये हैं हमारे राष्ट्र के नायक जिनका अनुकरण हमें करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल, और इसलिए आप देख रहे हैं कि हर साल पद्मा के लिए नॉमिनेट करने वालों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे तमाम लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। अब जो लोग हमारे पद्मा अवार्ड विनर्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में हैं, अब समाज में उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम बदल गया है, एक अलग तरह का सम्मान है। और न सिर्फ उन अवार्डीज के प्रति, बल्कि ऐसे अनेक लोग जो काम कर रहे हैं उनके प्रति भी समाज का एक बहुत सकारात्मक, बहुत सम्मानजनक नजरिया हो गया।
0: जी डॉक्टर शशि, आप क्या कहेंगी?
2: जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हम प्रसिद्ध लोगों को प्रसिद्ध कर रहे थे, अब हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। समाज का आलोडन होता है और उसमें जो सेल्फ नॉमिनेशन है उसको भी एड कर दिया गया है, जिससे कि ये आत्मस्तुति नहीं है, परंतु व्यक्ति ने यदि कोई कार्य किया है तो देश के समक्ष आने का एक साधन बना है। तो इससे क्या है कि अनेक प्रकार के लोग जो अनजाने हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनके कार्य को कोई नहीं जानता, वो उनके नाम उभर कर आ रहे हैं और उनको उससे मनोबल मिलता है। वो कोई एकमात्र अलंकरण नहीं होता, उससे व्यक्ति को मनोबल इतना मिलता है कि अच्छा, मुझे इस कार्य के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया गया, अब मेरे ऊपर और बहुत बड़ा दायित्व आ गया है, मुझे और बढ़ चढ़ कर ये कार्य करना है, तो वो और बढ़कर करता है। दूसरा, आपने प्रश्न किया संस्कृति के विषय में, संस्कृति का अध्ययन जो है वो भी हमारी पीढ़ी को और करना पड़ेगा। हमारे से अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी भी आ गई है, तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे ये ऐसा अनुभव होता है कि संस्कृति का अध्ययन करके ठीक से लॉजिकली और एक ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को देंगे तो बच्चे तैयार हैं, अगली पीढ़ी तैयार है। यदि हमने नहीं दिया तो हम चूक जाएंगे, बहुत सा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा।
1: 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा की थी, उसमें एक प्रण था अपनी विरासत पर गर्व
2: जी।
1: तो यही मुझे लगता है कि बॉटम लाइन है, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और अपनी पीढ़ी को भी एक ऐसा वातावरण दें कि वो भी अपनी विरासत पर गर्व कर सके, तो वो संस्कृति को आगे ले जाएंगे।
2: और वो विरासत पर गर्व तब होगा जब हमें उसकी महानता का ज्ञान होगा।
0: शायद हमारा एक गोल, हमारा एक इंटेंशन इस चर्चा के जरिए वही था कि अपनी विरासत की महानता को सामने लाया जाए। ये हमारी स्पेशल सीरीज है जन सेवा से देश सेवा, और संस्कृति के कई ऐसे विचार हैं जो शायद अगली वार्तालाप में हम जिनका जिक्र करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, भारत की विरासत, संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे थे इंदिरा गांधी।

राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशि बाला कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचेता चैनल है 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। अब वक्त है कार्यक्रम दर्पण का। दर्पण का पहला पायदान एक नजर, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे बहुत सारे विषयों के ऊपर। महालय की पावन बेला में आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाल में महालय केवल एक तिथि नहीं बल्कि भावनाओं, आस्था और अनगिनत यादों का एक उत्सव है। इस दिन अनेक लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में तर्पण करते हैं और माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं। महालय हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, शक्ति और सद्भाव की विजय का विश्वास सदैव जीवित रहता है। बंगाल में महालय की सुबह का अपना ही एक जादू है। घरों में रेडियो बजता है, शंख ध्वनि सुनाई देती है, कहीं तर्पण की तैयारी होती है तो कहीं चाय की प्याली के साथ पूरा परिवार एक परिचित आवाज में खो जाता है। मन कहता है माँ आ रही है, महिषासुर मर्दिनी का आगमन होने वाला है। 1930 के दशक से जुड़ी इस ऐतिहासिक रेडियो परंपरा में वाणी कुमार की रचना, पंकज कुमार मल्लिक का संगीत और वीरेंद्र कृष्ण भद्र का ओजस्वी चंडी पाठ पीढ़ियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता रहा है। शुभ महालय जय मां दुर्गा के साथ आज 10 अक्टूबर है, तो आज 10 अक्टूबर को हम मना रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ष 2026 यानी कि इस साल का थीम है जीने के अनुभवों को सुना जाए, सच्ची आवाजें, सच्चा बदलाव, यानी इट इज लिव्ड एक्सपीरियंस हर्ड, रियल वॉइसेस रियल चेंज। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों और उनके वास्तविक अनुभवों जैसे कि मानसिक तनाव हो गया, चिंता, जीवन की कठिन परिस्थितियों को सुनना और समझना, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना किया है। दस अक्टूबर को आज राष्ट्रीय डाक दिवस भी है, नेशनल पोस्टल डे। हर साल इसी दिन को इसे मनाया जाता है और वर्ष 2026 इस साल भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस सप्ताह जो है 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। वन पोस्टल नेटवर्क इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं, ये है इस वर्ष का थीम और आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय डाक दिवस का उद्देश्य अगर हम बताएं तो भारतीय डाक का योगदान क्या है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास,

संचार, बैंकिंग सेवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट पोस्टल सिस्टम के योगदान को सम्मानित करने का दिन है। इसके अलावा डाक कर्मचारियों का सम्मान भी इस दिन को किया जाता है। 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में मनाया जाता जन्म हुआ एक बहुत ही बड़े साहित्यकार का, और उन्हीं के जन्म जयंती को आज हम मना रहे हैं। इनका नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, यानी कि आर के नारायण। जी हाँ, इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। आर के नारायण क्या प्रसिद्ध है, जो काल्पनिक शहर है, हम सभी जानते हैं मालगुडी डेज। उनकी अधिकांश कहानियां इसी काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर पर आधारित है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर, बहुत सारे ऐसे जो साहित्य रचनाएं के लिए ये जाने जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए 1960 को और पद्म भूषण से नवाजे गए 1964। पद्म विभूषण इन्हें दिया गया सन 2000 को। कार्यक्रम दर्पण का पहला पायदान है एक नजर, जिसके अंतर्गत आज हमने बहुत से विषयों पर बात की। आगे बढ़ेंगे दूसरे पायदान के साथ, जो है साप्ताहिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी, संकलन और प्रस्तुति नुपुर तिवारी की।

0: नमस्कार। शहर की तमाम गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे डाक विभाग, रेलवे, भारतीय मानक की। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं महालया से। देवी पक्ष की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। ये दिन पितृ पक्ष की समाप्ति और देवी पक्ष माँ दुर्गा के आगमन का समय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। महालया के शुभ दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की आंखें तैयार करते हैं और उनमें रंग भरते हैं, जिसे चक्षुदान की रस्म कहा जाता है। इसके बाद ही मूर्तियों को अंतिम रूप देकर पंडालों में स्थापित किया जाता है। महिषासुर वध की पृष्ठभूमि के बारे में चलिए बताते हैं आपको कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राक्षस राजा महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। वहीं आज महालया को लेकर कोलकाता के ईडन गार्डन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जहां राज्य के मंत्रियों के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। आइए अब बात करते हैं रेलवे की। हावड़ा डिवीजन ईस्टर्न रेलवे ने दुर्गा पूजा 2026 के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, जिसका मुख्य विषय है हर सफर घर तक सुरक्षित। इस त्योहार के दौरान भक्तों की भारी आवाजाही की उम्मीद है, खास तौर पर महाषष्ठी 17 अक्टूबर से विजयदशमी 21 अक्टूबर तक। केवल हावड़ा स्टेशन पर पीक दिनों में रोजाना 7 से 8 लाख यात्रियों के आने का अनुमान है, जबकि श्रीरामपुर में 1.4 से 1.5 लाख और बर्धमान में यही रोजाना 1 से 1.5 लाख यात्री। डिविजनल रेलवे मैनेजर हावड़ा डिवीजन श्री विशाल कपूर ने बताया कि पूरी योजना पूजा दर्शन करने वाले यात्रियों के मूवमेंट पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाई गई है। स्टेशन पहुंचने और टिकट्स खरीदने से लेकर ट्रेन में चढ़ने, रात भर पंडाल देखने और सुरक्षित घर लौटने तक भीड़ वाले स्थानों पर बैरिकेटेड और रोशनी वाले पैसेंजर मूवमेंट एरिया, नियंत्रित सर्कुलेशन रूट और साफ तौर पर चिन्हित इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था की गई है, ताकि पीक आवर्स में सुरक्षित आवाजाही हो सके। इसी विषय पर DRM ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
1: पूजा स्पेशल जो है, पूजा में जो स्पेसिफिकली जहाँ तक ट्रेन्स का सवाल है, 7 TOD स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं वो चलाई जा रही हैं, और इसके अलावा 7 EMU स्पेशल्स भी चलाई जा रही हैं। स्पेसिफिकली EMU के अंदर हम लोग जो बाकी समय करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन इस बार हमने एक स्पेशल एफर्ट शियालदा डिवीजन के साथ मिल करके ये किया है कि अक्रॉस द रिवर बैंडल नेहाटी और सियालदा से लेकर के दांकुनी, इसके बीच में कुछ EMUs को, लेट नाइट EMU को, एक पेयर को हम लोग चलाने की कोशिश की है, सो दैट अक्रॉस द रिवर आराम से लोग जो है वो जा सकें और वो कनेक्टिविटी पा सकें। सिक्योरिटी वाइज मैंने आपको बताया पहले, सिक्योरिटी में RPF का विजिबल प्रेजेंस दिखेगा, डॉग स्क्वाड्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे, साथ ही

0: उद्योगों के महत्व और दुनिया भर के मानक संगठनों के सहयोग को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन ISO, IEC और ITU की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस साल के वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2026 की थीम है बेहतर दुनिया के लिए साझा विजन, SDG 7 पर विशेष ध्यान, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इसका उद्देश्य है कि कैसे मानक सबके लिए सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने में मदद करता है। इस संदर्भ में 7 अक्टूबर को कोलकाता में वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे समारोह भी मनाया गया। इस विषय पर कोलकाता डिवीजन के निदेशक ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
1: भारतीय मानक ब्यूरो शाखा जो हमारे है रीजन है पूर्व ईस्टर्न रीजन, उनके तरफ से हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर साल जो हमारे स्टैंडर्ड्स के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट है या जो भी जो लोग काम कर रहे हैं स्टैंड मानक के प्रति, तो उनको हम लोग सम्मान के लिए सम्मान देने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ही ISO, IEC ये लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं। BIS की राष्ट्रीय मानक संस्था है भारत का, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडिया में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग 14 अक्टूबर को हर वक्त सेलिब्रेट होता है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ उत्पाद के लिए इनको पहली बार ISI मार्क मिला है, उनको हमने सम्मानित किया। और हमारा जो SDG 7 है, ये हमारा थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसे आप जानते हैं कि जो मानक जो हम लोग मानक बना देते हैं, वो मानक से हर एक का जो मिनिमम एफिशिएंसी जो होना चाहिए वो मेंटेन हो जाता है।
0: वही प्रस्तुत एक और अधिकारी से हमने बात की।
2: मीनाक्षी गणेशन, उप महानिदेशक पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से विश्व मानक दिवस आज अक्टूबर 14 ये दिवस मना रही है। क्वालिटी इकोसिस्टम एंड एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी टू द कॉमन पब्लिक, द वेरियस इंडियन स्टैंडर्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिलेटेड टू सोलर एनर्जी आर इन प्लेस।
0: वही उपस्थित कुछ बच्चों से भी हमने बात।
3: हम यहाँ पर भगवती बालिका विद्यालय से आए हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर स्कूल का एक मिनिएचर वर्जन क्रिएट किया है। मिनिएचर वर्जन में हम यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है। तीन सोलर पैनल से फर्स्ट सोलर पैनल में जो रिन्यूअबल एनर्जी को क्रिएट करके ये जो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सेकेंड यहाँ पर जो सोलर स्ट्रीट यहाँ पर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस लाइट। एंड वी ऑल नो दैट फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, बट इफ वी यूज दिस रिन्यूएबल एनर्जी देन वी आर यूज टू इट।
0: आइए बात करते हैं डाक विभाग की। डाक विभाग पश्चिम बंगाल सर्कल ने 9 अक्टूबर 2026 से नेशनल पोस्टल वीक शुरू होने की घोषणा की। 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे। इस बार की थीम है वर्ल्ड पोस्ट डे, वन पोस्टल नेटवर्क, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इस हफ्ते भर के जश्न में डाक नेटवर्क का विस्तार, नई टेक्नोलॉजी और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर फोकस किया गया। कार्यक्रम की सूची कुछ इस प्रकार थी। 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे, 12 अक्टूबर को फन विद फिलैटली डे और 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड CCS डे। 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा मेल्स एंड पार्सल्स डे। वहीं 15 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डे। इस विषय में श्री अशोक कुमार, चीफ पोस्टमास्टर जनरल वेस्ट बंगाल सर्कल ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
4: आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जा रहा है। हम देश में और बंगाल में भी वर्ल्ड पोस्ट डे मना रहे हैं 9 तारीख को। और कलकत्ता के टाउन हॉल में हमने कुछ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे पहले हमने फिलैटेलिक फैशन शो किया, लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह के बच्चों को अवार्ड दिया। तो ये टुडे वर्ल्ड पोस्ट डे है। 12 अक्टूबर को मंडे को हम लोग फन विथ फिलैटेली डे मना रहे हैं, फिलैटेलिक्स से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। एक GPO में सेंट्रल कोलकाता GPO में सेंट्रल एक्टिविटी होगा, जिसमें हम एक फिलैटेली का एग्जीबिशन लगा रहे हैं और कुछ स्पेशल कवर निकालेंगे। बाकी जो डिविजन्स हमारे हैं, जिला के लोग हैं, वो स्कूल में फिलैटेली पे सेमिनार कराएंगे, सिंपोजियम कराएंगे, एक दो फ्रेम का फिलैटेली का फ्रेम लगाएंगे, जिससे को बच्चों को पता चले कि फिलैटेली एग्जीबिशन होता क्या है, फिलैटेली का मतलब क्या है।
0: अभी आप सुन रहे थे शहर की तमाम गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी। अगले अंक में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
5: सुन रहे थे कार्यक्रम दर्पण का दूसरा भाग साप्ताहिकी। इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम की घोषणा थोड़ी देर में, तब तक सुनते रहिए इस गीत को।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचयता चैनल है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:15 हुए हैं। पेश खिदमत है आपका पसंदीदा हफ्त रोजा उर्दू प्रोग्राम कहकशा आपके मेजबान अयाज अहमद रोफी के साथ। तो फिर दोस्तों, आप अपने मोबाइल रेडियो को ट्यून करके हमारे साथ जुड़ जाएं इस मकबूल हफ्त रोजा उर्दू प्रोग्राम कहकशां के साथ। हम कहकशां के इस निसफ घंटे के प्रोग्राम में आपके अदबी और सकाफती जौक की भरपूर तस्कीन करने की कोशिश करेंगे। याद रखें, ये प्रोग्राम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी दस्तयाब है, या फिर अपने मोबाइल फोन पर सिर्फ संचयता चैनल टैप करके ऑनलाइन रेडियो पर भी ये प्रोग्राम सुना जा सकता है।

ए रोजमर्रा के चैलेंजों से मुतासिर हो सकता है। हंगामी हालात के दौरान ज़हनी तंदुरुस्ती और भी अहम हो जाती है, क्योंकि तनाव, खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल मुकाबला करने की सलाहियतों को मगलूब कर सकती है, जिससे फैसले करना, अपनी देखभाल करना या दूसरों की मदद करना मुश्किल हो जाता है। बेदारी की वसी कमी और जहनी सेहत से मुतालिक बदनुमा दाग के पेश नज़र दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए हर साल आज के दिन यानी 10 अक्टूबर को दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका क़याम 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने किया था, जो एक आलमी जहनी सेहत की तंजीम है जिसके 150 से ज़ायद मालिक में मेंबर्स हैं। 1994 में एक मरकजी थीम के साथ इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत हुई थी। सामीन, दिमागी सेहत के आलमी दिन की अहमियत एक याद दहानी के तौर पर इसके किरदार में मुजमिर है कि जहनी सेहत मजमूई फलाह बहबूद का एक लाजमी हिस्सा है। ये अफराद, खानदानों, कम्यूनिटीज और तंजीमों की हौसला अफजाई करता है कि वो जहनी सेहत की जद्दोजहद को तस्लीम करें और मुआविन माहौल पैदा करने में मिलकर काम करें। मुख्तसर ये कि दिमागी सेहत के आलमी दिन का इनकाद दुनिया भर में जहनी सेहत के मसाइल के बारे में शऊर बेदार करना है और दिमागी तंदुरुस्ती की अहमियत को उजागर करना है। इन साल का मरकजी थीम है मुस्तनद आवाज़ें और हकीकी तब्दीली। सामीन, अब गुफ्तगु महलाया से। आज पूरे जोश व खरोश के साथ मग़रिबी बंगाल में महालया मनाया जा रहा है। यह हिंदू मत बिलखसूस हमारे बंगाली हिंदू भाइयों का एक इंतहाई अहम और मुकद्दस त्यौहार है, जो दुर्गा पूजा के आगाज का ऐलान करता है। ये दिन बुनियादी तौर पर दो अहम मजहबी पहलुओं का संगम भी है। नंबर एक, पितृ पक्षा का खात्मा और देवी पक्षा का आगाज। दूसरा, देवी दुर्गा की जमीन पर आमद। महालया हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आश्विन महीने की अमावस्या नए चांद की रात को आता है। ये दिन पितृ पक्षा का वो 15 दिन जिसमें अजदाद की अरवाह को याद किया जाता है का आखिरी दिन होता है और इसी दिन से देवी पक्षा शुरू होता है, जिसका मतलब है कि देवी दुर्गा की पूजा के दिन करीब आ गए हैं। मजहबी अकायद के मुताबिक महालया के दिन देवी दुर्गा अपने बच्चों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ कैलाश पर्वत से निकलकर जमीन पर यानी अपने मायके की तरफ सफर शुरू करती हैं। इस दिन को देवी की तरफ से शयातीन पर फतह पाने की तैयारी के तौर पर भी देखा जाता है। आज के दिन सुबह सवेरे लोग दरियाओं, खुसूसन दरियाए गंगा के किनारे जमा होते हैं और अपने फौत शुदगान अजदाद की रूह के सुकून के लिए पानी और तिल का नजराना पेश करते हैं, जिसे तारपन कहा जाता है। आज के दिन पूजा पंडालों के लिए मूर्ति बनाने वाले कारीगर देवी दुर्गा की मूर्तियों की आंखें तैयार करते हैं, रंग भरते हैं, जिसे एक मुकद्दस रस्म माना जाता है। सामीन, आज हुगली के घाटों पर बड़ी चहल पहल रही। हजारों लोग जमा हुए और अपने अजदाद के नाम पर पानी, तिल और कशा घास पेश किया और इसी के साथ इस त्यौहार के आगाज के सिलसिले को खुश आमदीद भी कहा।

नाम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी था। वो आज ही के दिन यानी 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास अब चेन्नई में पैदा हुए थे और 13 मई 2001 को चेन्नई में ही परलोक सधारे। अपनी जिंदगी में तकरीबन 60 साल तक अंग्रेजी अदब तख्लीक करते रहे। यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आर के नारायण हिंदुस्तानी अंग्रेजी अदब के बानियों में शुमार होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इन्होंने जनूबी हिंदुस्तान के एक ख्याली शहर मालगुड्डी को तख्लीक किया। उनके तकरीबन तमाम नावल और कहानियां इसी शहर के आम लोगों की जिंदगी के गिर्द घूमती हैं। मशहूर अंग्रेजी नावल निगार ग्राहम ग्रीन ने उनकी पहली किताब शाये कराने में अहम किरदार अदा किया था। इनका पहला मशहूर नावल स्वामी एंड फ्रेंड्स था और इनका सबसे मशहूर नावल द गाइड था, जिस पर फिल्म भी बनी। इनके कई मशहूर कहानियों के मजमुए हैं, जैसे मालगुद्दी डेज और टाइगर फोर मालगुद्दी वगैरह। ये साहित्य एकेडमी अवार्ड से सरफराज भी किए गए। इन्हें पद्म भूषण और पद्मा विभूषण जैसे एजाजात से भी नवाजा गया। मुख्तसर ये कि आर के नारायण ने हिंदुस्तान की आम जिंदगी को अंग्रेजी अदब में ऐसी खूबसूरती से पेश किया कि वो आज भी दुनिया भर के कारहीन में मकबूल हैं। सामीन, अभी आप आज की बात के तहत समाअत फरमा रहे थे दिमागी सेहत के आलमी दिन महालया और आर के नारायण की यौम पैदाइश पर हमारी गुफ्तगू।

0: सामीन, ये आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचाता है और आप समाप्त फरमा रहे हैं अफ्तरोजा उर्दू प्रोग्राम कहकशां अपने मेज़बान अयाज अहमद रोवी के साथ। अब बारी है शाम अफसाना का। इस मौजू के तहत इस हफ्ते हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं मगरबी बंगाल के मारूफ शायर जनाब अजीमुल्ला हाशमी से इनका बिल्कुल ताज़ा अफसाना और जमुना बहती रही। समाअत फरमाएं सामीन।
1: अफसाना और जमुना बहती रही। शीतलपुर से आने के बाद उसके दिमाग में ये बात गर्दिश कर रही थी कि संगम पर गंगा और जमुना सबको, लेकिन सरस्वती जी किसी किसी को दिखाई देती हैं। समंदर मंथन के बाद जब अमृत निकला तो उसको हासिल करने के लिए मनुष्य और देवता दोनों में जंग छिड़ गई। देवता मनुष्य को अमृत देने के लिए तैयार नहीं थे और मनुष्य का कहना था कि जब भगवान के कृपा से अमृत निकला है तो इस पर दोनों का अधिकार बराबर होना चाहिए, लेकिन देवता इसके लिए राजी नहीं थे। वह इस पर सिर्फ अपना हक समझते थे। मनुष्य उनसे दो बूंद अमृत की फरियाद करते रहे और देवता यही कहता रहा कि यह सिर्फ देवताओं के लिए बना है और तुम मनुष्य हो। फिर घमसान हुआ। इस घमसान पर परलोक से अमृत छलक कर पृथ्वी पर तीन जगह गिरा। संगम भी उनमें से एक है जहां हर साल माघ महीने के महाकुंभ का मेला लगता है। यहाँ सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें जमुना में सोना घोल देती हैं। सरयू जिस तरह खुशी से हलकोरे लेते हैं कि भगवान राम उसको ही पार करके वनवास गए थे, उसी तरह हर पहर संगम की लहरें भी खुशी से उछलती रहती हैं। परलोक से अमृत उनके ही साहिल पर छलका था। इस संगम पर डूबते सूरज के साथ आरती की घंटियां, भजन व कीर्तन की आवाजें, यहाँ की ठंडी हवाएं

और सूंधी मिट्टी की एक कुल्हड़ चाय के साथ खामोशी के दो चार पल से दाखिली खुशियों के हर द्वार खुल जाते हैं। यहाँ जमुना के ऊपर हजारों परिंदे रोज मंडलाते रहते हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जमुना की गोद जमुर्द की डलियों से भरी पड़ी है, इसलिए ये सब्ज दिखती हैं। जैसे ही सयाह पानी की सतह पर दाने फेंकते हैं, ये परिंदे उसको हासिल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसके दौरान कभी कभी ये आपस में लड़ भी पड़ते हैं, कभी कभी ये लहूलहान भी हो जाते हैं, और कभी कभी चोंच से चोंच मिलाकर अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। ये सब देखकर सयाहों को बड़ा मजा आता है। इन्हीं परिंदों की चोंच मुख्तलिफ रंगों की है। बाज परिंदों के पर सफेद हैं और बाज के मटियाले जैसे आगे चलकर गंगा मैया का पानी हो गया है। ये भूखे परिंदे अपने रिज्क की तलाश में इधर आ निकलते हैं। इस महानगरी में आए उसको एक साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन लोगों की जबानी समंदर मंथन अमृत पाप और पुण्य के साथ दादा मियाँ की करामत की कहानी भी खूब खूब सुनने को मिली। चाय की दुकान, पान की दुकान, नाई की दुकान, दवा की दुकान, शादी ब्याह की महफिल, जहां देखो बस उन्हीं का जिक्र। दादा मियाँ ऐसे थे, दादा मियाँ वैसे थे, दादा मियाँ ये थे, दादा मियाँ वो थे, यहाँ उनकी करामत है। जिनको उन्होंने ऐसे उठाकर पटका, उस जिन्नात से उस तरह चक्की पिसवाई, जब जाते मुवक्किल हाजिर हो जाते, खन्नास को अपने करामती चराग से ऐसे जलाया, पिछल पैरी तो उनके देख को दूर से ही भाग निनियाने लगती थी और देवजान चिड़चिड़ाकर भागने लगते थे। परियां अपने पंख से उनको हवा देती थी। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके मासूम बच्चे आम के बागीचे में खेलते हुए जैसे ही सफेद सांप को देखते चीख कर एक दूसरे से कहते हैं, मत मारो मत मारो, रास्ता छोड़ दो, ये दादा मियाँ की सवारी है। सोते दादा मियाँ, उठते दादा मियाँ, खाते दादा मियाँ, पीते दादा मियाँ, चलते दादा मियाँ, रुकते दादा मियाँ। उसको समझ में नहीं आ रहा था दादा मियाँ कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। लोगों की बातों को सुनकर वह दादा मियाँ को गैबी मखलूक समझने लगा। इन्हीं लोगों की जुबानी सुना था कि दादा मियाँ शहीद थे। आजादी के दौरान जहाँ उनकी शहादत हुई, धड़ वहीं पर रहा, लेकिन दुश्मनों ने 10 किलोमीटर दूर शीतलपुर के एक बियाबान में दफन कर दिया। उनका कहना है कि 6 महीने में एक दफा हर अमावस की पहली रात जुमेरात को जोहर बाद ये सर बरीदा धड़ अपने सर से मिलने आता है। उसके लिए वह गैबी सफेद घोड़े की सवारी करता है। रेशम जैसा चमचमाता लगाम, हाथ में पैर और सोने के रकाब पर एक दिन सवारी जा रही थी और करीम मियाँ तब दब दब करती दोपहर में बांसवाड़ी से गुजर रहे थे कि दादा मियाँ से उनकी मुलाकात हो गई। पहले तो बेसर की सवारी देखकर उनके अवसान खता हुए, लेकिन फिर खुद को संभाला और पीछे हो लिए। कुछ दूर जाने के बाद आवाज आई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो? करीम मियाँ ने कहा, साहिल की झोली में जो कुछ डाल दीजिए हजूर। उस सरबरीदा बदन ने उनको एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा, ले, तुमको जिंदगी का खजाना दे रहा हूं, इसको हिफाजत से रखना। कुछ दिनों तक यह करामाती सिक्का उनके पास रहा, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गया। उस दिन वो बहुत परेशान रहे, घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिला। वह इसके लिए फूट फूट कर रोए, लेकिन न मिलना था सो न मिला। गांव वालों को फुसुर फुसुर से पता चला कि दादा मियाँ की करामत है। उनके मुताबिक इधर कुछ दिनों से वह इससे कमाने धमाने लगे थे और दादा मियाँ ने इसको सिक्का देते हुए वक्त नसीहत की थी कि इसको गैबी कुवत से लोगों को भलाई करना कमाई नहीं। शुरू शुरू में उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन बाद में पटरी से उतर गए, फिर जो चीज जहाँ थी वहां चली गई। इन सब करामाती बातों को सुनते सुनते एक दिन उसके जी में आया, क्यों न मैं भी दादा मियाँ की सवारी से मुलाकात करूं। इसके लिए उसे शीतलपुर जाना था अगले महीने की पहली जुमरात को। उसने सुबह सवेरे उठकर मेरे ही साथ संगम पर स्नान किया। इस दौरान जमुना की सतह पर परिंदों को दाने के लिए एक दूसरे पर झपटते और पानी में गोते लगाते हुए देखा। वहां से वापसी के दौरान रास्ते में दो परिंदों की करतबबाजी का जिक्र करता रहा।

सिरे पर आकर बादाम खाया और सुराही से ठंडा पानी पीकर साइकिल उठाई और चल दिया। अभी 40 मिनट की मुसाफत तय हुई थी कि अचानक साइकिल की ब्रेक खराब हो गई। वो बहुत घबराया कि अब क्या करूं। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, चारों तरफ लहलहाती ताजा ताजा सब्ज फसलें झूम रही हैं, रह रह कर रहट की आवाज आ रही है, कभी कभी कुएं के चरखे की घड़घड़ाहट भी सुनाई दे जाती है। वह पास के एक चबूतरे पर बैठ गया जहां सफेद डाटा बांधे दो किसान बैठकर आपस में गुप्तगु कर रहे हैं। संगम पर गंगा और जमुना सबको, लेकिन सरस्वती जी किसी किसी को दिखाई देती हैं। उसकी परेशानी को देखकर दरमियान में एक किसान ने अपनी बात रोककर इशारा करते हुए बताया कि सामने चौराहे पर शीशम के नीचे साइकिल बनाने वाले की दुकान है। तब उसकी जान में जान आई। बताई गई जगह पर वह किसी तरह पहुंचा। एक नौ उम्र लड़के ने साइकिल की ब्रेक बनाई। जब पैसा देने के लिए दुकान के मालिक के पास जाकर पॉकेट में हाथ डाला तो जी एकदम सन से हो गया। अब क्या करूं? मालिक ने कहा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, कहाँ जाना है? उसने कहा, शीतलपुर। दुकान के मालिक ने पूछा, दादा मियाँ से मिलने? वो हैरत से उसका मुंह देखने लगा, इसको कैसे पता है? इस बात में सर हिलाने से उसने 50 रुपये की नोट निकालकर देते हुए कहा, ये लो, रास्ते में फिर कोई जरूरत पड़ी तो इससे काम चला लेना, और हाँ, जब भी कभी इधर आना हो तो ब्रेक बनाई और इस रुपये को वापस कर देना। वह इसको उसकी दरिया दिली से ज्यादा दादा मियाँ की करामत समझ रहा था और वहां से सीधे शीतलपुर के लिए रवाना हो गया। शीतलपुर जाने के लिए एक नदी पार करने पड़ता था। नदी के पास जिस वक्त पहुंचा, उस वक्त एक आदम न आदम जात न चरिंद व परिंद, सिर्फ इमिलताश शीशम गमार के तनावर पेड़ सर उठाए खड़े थे। कभी कभी किसी परिंदे की आहट सुनाई दे जाती और गंगा मैया जैसे मिट्टियाले पानी के नदी अपनी प्रवाणी में बह जा रही थी। सन्नाटे को देखकर अजीब अजीब ख्यालात उसके जहन में आने और जाने लगे। सवारी ले जाने वाला मल्लाह अभी उस पार से डेंगी लेकर वापस नहीं आया था। वह चिलचिलाती धूप में इमिलतास के घने साये में बैठ गया। जमीन पर चारों तरफ जोर जोर जर्द जर्द पत्ते बिखरे हुए हैं। मौलेसरी की खुशबू जब आती तो जहन भटका, कभी जिन याद आया, कभी पिछल पीरी याद आई, कभी परी दिखाई दे गई तो कभी संगम पर दर्द से कराहते परिंदे दिखाई दे गए। पहले तो उसका जी घबराया, लेकिन थोड़ी देर में दो तीन मुसाफिर आ गए और तब तक इस पार मल्लाह भी डेंगी लेकर आ गया। सब लोग इस पर सवार हो गए। डेंगी जब बीच नदी में पहुंची तो मल्लाह ने दादा मियाँ की गुरुबानी सुनाते हुए ये भी कहा कि किस तरह दादा मियाँ ने एक दफा बगैर डेंगी के अपने मुसल्ले पर इस नदी को पार किया था। इसके दिलचस्प किस्से को सुनते सुनते ये लोग नदी पार कर गए। साइकिल की दो मालिक ने जो पैसा दिया था उससे उसने डेंगी का किराया दिया। बाकी पैसे को जेब में रखकर साइकिल चलाने लगा। कच्चे रास्ते पुकारते रहे और वह पक्के इरादे से चलता रहा। वह जिस वक्त शीतलपुर पहुंचा, उस वक्त जोहर खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। वो वही लोगों के बताए हुए शमशान जगह पर पीपल के नीचे चटियल मैदान में दादा मियाँ की सवारी की आमद का इंतजार करने लगा। जैसे ही जवाल का वक्त हुआ, गुलाब और जाफरान से मिले जुले एक खुशबू का झोंका आया। उसके थोड़ी देर बाद देखा, दूध की तरह सफेद सांपों की झुंड जंगल की तरफ जा रही है। मन ही मन में कहा, शायद अब पीछे से दादा मियाँ की सवारी आने वाली है। तब तक जहन में मल्लाह के कहे गए दादा मियाँ की गुरबानी कानों में गूंजती रही। ये दुनिया मकाफात अमल है। अर्श की जिंदगी के लिए फर्श की जिंदगी का त्याग जरूरी है। अभी ये सब बातें दिमाग में गूंज रही थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने चुपके से उसके कान में कहा हो, आज दादा मियाँ की सवारी नहीं आएगी, वह संगम पर गए हैं। आवाज की आहट से उसको ऐसा महसूस हुआ
जैसे इस

0: बार साइकिल खराब हो गई और चबूतरे पर बैठे दोनों किसान कह रहे हैं, संगम पर गंगा और जमुना सबको, लेकिन सरस्वती जी किसी किसी को दिखाई देती हैं। चंद घंटे बाद वो वहां से लौट आया। तो चार दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह संगम पर नहाने के दौरान उससे मुलाकात हो गई। मैंने उससे पूछा, शीतलपुर से कब वापसी हुई? नहाने के दौरान सफर की रुदास सुनाते हुए उसने पूछा, आपको कैसे मालूम? तब मैंने उसको बताया कि जिस बूढ़े किसान ने तुमको साइकिल बनाने वाले की दुकान दिखाई, वो मेरे पिता परमेश्वर और दुकान का मालिक मेरा अपना छोटा भाई परशुराम है, जिसने फोन पर इस वाकये को मुझसे उसी दिन दोहराते हुए कहा था। आपके इलाहाबाद के एक महापुरुष साइकिल बनवाने आए थे। उसने फिर मेरी तरफ एहसान मंद नजरों से देखा और लिए हुए रुपये को उसको वापस करने का वादा करके नहाने लगा। मैंने भी डुबकी लगाई और देखा, सूरज की पहली किरणें संगम पर सोना घोल रही हैं। जमुर्द की डलियों की गोद में लिए जमुना चमचमाते पानी की सतह पर सयाह अपने साथ लाए दाने को फेंक रहे हैं और परिंदे उनको पाने के लिए काफी जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस दौरान कभी कभी जमुना के अंदर डुबकी लगा लेते हैं और कभी कभी आपस में गले भी मिल लेते हैं, चोंच से चोंच मिला लेते हैं और कभी कभी आपस में गुत्थम गुत्था होकर लहूलहान भी हो जाते हैं। इधर शिवालय में धूने संदल और चंदन की मखलूत भीनी भीनी खुशबुओं से रची बसी फिजा में आरती की घंटियां बज रही हैं। ये घंटियां तब तक बजती रहेंगी जब तक दुनिया परलय न हो जाए। इन परिंदों के नीले गगन के तले गले मिलते तब तक देखा जाता रहेगा जब तक जमुना में पानी बहता रहेगा। मैंने देखा उसके होंठों पर गंगा की लहरों की तरह सुबुक और कोमल मुस्कुराहट आ और जा रही थी है और वह डुबकी पर डुबकी लगाए जा रहा है। माहौल एकदम पुरसकून, सिर्फ बाकी रह गई है छप छप छप नदी के थपेड़ों की आवाज और फिजा में फैले धूने और चंदन की भीनी भीनी खुशबू, जिसकी महक से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी आत्मा के शिवालय में चंदन, उधर उसके मन के हरम में संदल जल रहे हों और हम दोनों के अंदर के हर द्वार खुलते जा रहे हों और परलोक से अमृत टप टप मन के सागर में गिर रहा हो। मैंने हंसते हुए उससे पूछा, अब शीतलपुर कब जाओगे? उसने संगम की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया जैसे वह कह रहा हो, संगम पर गंगा और जमुना सबको, लेकिन सरस्वती जी किसी किसी को दिखाई देती हैं।
1: सामीन, अभी आप शाम अफसाना के तहत जनाब अजीमुल्ला हाशमी से इनका अफसाना और जमुना बहती रही समाद फरमा रहे थे। इसी के साथ प्रोग्राम की अगली पेशकश में हाजिर है बरगे ख्याल के तहत निदा फाजली की नगमा निगारी और मुकालमा निगारी पर हमारी गुफ्तगू। दोस्तों, निदा फाजली उर्दू के मुमताज तरीन जदीद शायर, फिल्मी नगमा निगार और मुकालमा निगार थे। इनका असली नाम मुक्तदा हसन था। इनकी पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुई थी और वफात 8 फरवरी 2016 को मुंबई में हुई। निदा फाजली ने उर्दू शायरी को एक नया लहजा और असलूब दिया जिसने एक नस्ल को मुतासिर किया। उनके अशार को नौजवानों ने अपनी बयाज में शामिल किया, इन्हें शौक से पढ़ा और खूब सुना। वो एक मकबूल शायर, नगमा निगार और मुकालमा निगार थे। निदा फाजली के नगमों और नज़मों की जबान नहायत सादा, आमफहम और असर अंगेज है। इन्होंने मुश्किल और सकीद अल्फाज के बजाय आम बोलचाल के अल्फाज को शायरी का हिस्सा बनाया। इनकी शायरी में जिंदगी की सच्ची तस्वीरें, इंसानी जज्बे, दुख दर्द और मुआशरती हकायक झलकते हैं। इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए यादगार नगमे लिखे। इनका मशहूर गीत कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। इन्होंने कमाल अमरूही की फिल्म रज़िया सुल्तान से अपनी फिल्मी नगमों की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महेश भट्ट की फिल्म सर समेत कई दीगर फिल्मों, टीवी सीरियल जैसे सुरभि के लिए कई नगमे लिखे। फिल्मी नगमों के साथ इन्होंने फिल्मी मुकालमों में भी अपनी इनफरादियत दिखाई। चूँकि इन्हें शेरी अदब के साथ नसरी अदब पर भी दस्तरस हासिल।

0: थी, लिहाजा इन्हें फिल्मी मुकालमे लिखने में दुश्वारी तो दूर अपनी एक अलग पहचान बनाई। मुकालमे लिखते वक्त इन्होंने बनावटी या मुबालगाराई पर मबनी जुमलों के बजाय हकीकी और फितरी मुकालमों को तरजीह दी। इन्होंने जिस किरदार के लिए भी मुकालमे लिखे उसकी नफ्सियात, समाजी पस मंजर और लहजे का खास ख्याल रखा। सामीन निदा फाजदी की शायरी में माँ का किरदार नहायत मोहब्बत, अपनाइयत और गहराई के साथ मिलता है। इनका माँ के बारे में कहा गया ये शेर उर्दू अदब में इंतहाई मशहूर मकबूल है कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुनकी जैसी माँ। तो सामीन, अभी आप बरगे ख्याल के तहत समाअत फरमा रहे थे निदा फाजदी की नगमा निगारी और मुकालमा निगारी पर हमारी गुफ्तगू। इसी के साथ आप अपने इस मेज़बान अयाज अहमद रोहवी को अब रुख्सत होने की इजाज़त दें, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी अब मज़ीद आपसे गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं दे रही है। शब बख़ैर सामीन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का 4था सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
4: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की।

0: इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात PM जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना

0: बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
1: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
0: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
2: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
0: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और 2 अविवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
3: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमेरिकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध

प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति के इस सफर में आज सुनेंगे एक नए सांस्कृतिक गांव की कहानी, एक कलाकार की अनुपस्थिति से बातचीत, शहर की छतों पर उगती हरियाली और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय। कल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में है, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है। भारत की कहानी भी इस मायने में ज्यादा अलग नहीं थी और कुछ मायनों में अलग भी है। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला था। यानी बालिका शिक्षा का बीज हमारी ही मिट्टी में बहुत पहले पड़ चुका था। फिर भी आज के आंकड़े हमें एक आईना सा दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुंचने का है। पढ़ने की आजादी के बाद चुनने की आजादी चाहिए, विषय चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और न चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान ना बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है। बेटियों के आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की। एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम।

0: में काम करता है।
1: देखिए ऐसा है कि CCRT दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेस तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेन करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये चारों सुविधाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस ड्रामा म्यूजिक पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो CCRT ये आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है। ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है। तो ये बहुत अहम, एक बहुत अच्छा एक कार्य है ऐसा मैं समझता हूँ। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में। यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग, बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम सब गतिविधियां करते हैं।
0: CCRT के द्वारा कला ग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: कला ग्राम तो निश्चित ही ये दो डिवीजन है और इसके पीछे सोच है। कला गुरुकुल जहाँ हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे। एकेडमिक पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा कलाग्राम का क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे किससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं भी मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहां पर एकेडमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी है। तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहां पे सबको दी जाएगी, देश भर के जितने आर्टिस्ट है उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहां से आर्ट वर्क जो बनने वाले हैं वो बेचे भी जाएंगे जिसमें एक जनरेशन भी होगा।
0: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
1: हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप्स जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स जो है ये हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम MOU भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं। कुछ NGOs जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, CSR पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जब तक कि हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे नहीं तब तक ये ढंग से चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू जनरेशन प्लान में भी, एक्टिविटीज में भी हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसकी फी रहेगी, टिकटेड कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे, फिर कुछ कंसल्ट कंसल्टेंसी भी रहेगी और कल्चरल सर्विसेज भी हम देंगे।

0: जिसका हमको पैसा मिलेगा। फिर पब्लिकेशन रहेगा, सेल्स ऑफ बुक्स रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल भी हम सेल करेंगे। फिर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चरल प्रोडक्ट्स, ये भी हम जो तैयार करेंगे उसका भी हम प्रमोशन करेंगे। कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज को हम बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंसेज जो है प्रोडक्शन हम हमारे बढ़ाएंगे।
1: कलाग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए, और कितने समय में कला प्रेमियों को ये सब देखने का मौका मिलेगा?
0: हमारे सीसीआईटी जो जहाँ पर एस्टैब्लिश है द्वारका में, तो करीब करीब 10 एकड़ लैंड में सीसीआईटी है। हमारी प्रांगण में हम वहाँ पर एक कलाग्राम वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमारा अभी करीब करीब खत्म होते आ रहा है, 80% काम हमारा हो गया है। और हमारी जो एक्टिविटीज है वो अभी से वो शुरू हो जाएगी, मतलब वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हमारा जो है ये एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज वगैरह, फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को दी जाती है उनके साथ में लेकर जो एक्टिविटीज है वो सारा हमारा शुरू हो जाएगा। पब्लिक जो यहाँ पर आने वाली है उनको भी एक करीब करीब एक 6 महीने के अंदर में उनको यहाँ पे ये लोग विजिट कर सकेंगे, और यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बनाया गया है सीसीआईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
1: आर्टिजन्स के लिए स्टॉल्स या शॉप्स का क्या प्रावधान रहेगा कलाग्राम में?
0: अब इसमें क्या दो लेवल पर काम होगा। एक तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स जो लड़के रहते हैं, जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, एक अमेच्योर लेवल पर काम होता है। तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उनको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए यहाँ पर हम एक्सपोर्ट स्लॉट लाएंगे, है ना, उनके लिए कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे। ये एक लेवल का काम हो गया। दूसरा ऐसा है कि हमको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करना है। तो प्रोफेशनल लेवल पर जब काम होगा तो देश भर में क्राफ्ट के बारे में इतना वर्क लोग करते हैं, जैसा बेल मेटल का वर्क है छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर, तो ऐसे जो जो ओरिजिनल इंडिजिनस काम करते हैं, वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन लोगों के यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे। दूसरी बात ऐसी है कि एकदम हाई प्रोफेशनल लोग भी जो रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा स्कल्प्टर है, वो यहाँ पे आके रह सकेंगे, वो यहाँ रहेंगे, वो काम करेंगे, और उनको हम जगह भी देंगे, और उनके माध्यम से बाकी लोग भी काम सीखेंगे, वो भी एक काम यहाँ पर होगा। दूसरी बात ऐसा है जो हम स्टॉल्स यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, तो जो स्टॉल्स हम तैयार करेंगे वो स्पेशली रेंटल बेसिस पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में है लोग जो प्रोफेशनली भी काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करके देंगे, उनको यहाँ पे स्टॉल्स के लिए जगह देंगे, लेकिन उसका एक रेंट रहेगा, उसके सिवा हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोफेशनल्स का बताया अभी हमें, तो क्या इसमें छोटे स्तर पर काम करने वाले आर्टिजन्स को भी कोई सुविधा मिलेगी या कोई डिस्काउंट जैसी कोई चीज मिलेगी, जिससे कि वो भी कला को आम लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी कला को दुनिया को दिखा सकें?
0: बिल्कुल, हमने सोच के रखा है, क्योंकि सारे के सारे पैसा कमा लेते ऐसा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका काम प्रोफेशनल रहता है, वर्क उनका बहुत शानदार रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग तो डाइंग आर्ट फॉर्म पे भी काम करने वाले हैं। बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स है भारत में, कई सालों से चल रहे हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और वो आर्ट मरनी नहीं चाहिए।
2: अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम। सौजन्य गुल निगार चौधरी, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।

कला की सार्थकता का एक पहलू ये भी है कि कला समुदाय के साथ कैसे चलती है, उसके साथ कैसे निभाह करती है। और इसी क्रम में हमारी अगली प्रस्तुति में हम मिलते हैं एक ऐसी कलाकार से जिनका काम अकेले में खामोशी में चलता है। आशिमा धीर सहगल की कला उन चीजों की हाजिरी लगाती रही है जो अब नहीं है, यानी अनुपस्थिति की हाजिरी। स्मृति अक्सर चीजों में नहीं, चीजों के न होने में बसती है। आशिमा की कला इसी न होने की पड़ताल है। गुजरा हुआ कल यहाँ एक धुंधला अक्स बनकर लौटता है। छूटी हुई जगहें, मिटे हुए निशान और बीते रिश्तों की परछाइयाँ अलग अलग माध्यमों में दर्ज हो जाती हैं। उनकी कला हमें बताती है कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है और याद करना भी एक तरह की हाजिरी लगाना है।

0: मुझे आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी शुरू से, जब से मैं छोटी थी. व्हाट वॉज हियर, ये उसके बारे में है. डज मैटर हैव मेमोरी? तो मैं एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए गई 45 डेज के लिए हिमालयाज में, विच इज वहाँ पर ना रॉरिक म्यूजियम है नगर में. और वहाँ पर इस रेजिडेंसी में मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई. आई बिगेन टू इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स की तो मेमोरी होती है, पर मैं सोचती थी कि इतनी अच्छी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सब गिरी हुई, कोई दिखता नहीं है इसको. वेरी ऑफन आई यूज्ड टू थिंक दैट, मतलब ये रिमेम्बर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, सेलिब्रेशन हुई, और साथ में यंगर पीपल कभी भी देखते भी नहीं है उसकी तरफ. सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दोज इन टू कंटेम्प्रेरी आर्ट.
1: जब मैं अपने ट्रेवल्स पे होती हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं देखती हूँ उनकी डिटेल्स, जो मटेरियल और मैटर होता है जिससे वो बिल्डिंग्स बनी है, तो वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ. और बहुत बारी सोचती हूँ कि कैन द वॉल स्पीक.
0: साथ में इन्वेस्टिगेट द आइडिया ऑफ डज मैटर हैव मेमोरी. तो ये स्लोली स्लोली मैं इन्वेस्टिगेट कर, जैसे मैं करती गई, मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो बोल नहीं सकता, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट दैट मैटर हैज मेमोरी. बिकॉज जब आप कोई दरवाजे से आप जाते हो, स्पेशली नगर में, वहाँ जब वुड से और स्टोन से बना हुआ है, तो वो ना वेयर आउट हो जाता है. तो दोज आर द एविडेंसेस दैट मैटर डज रिमेम्बर, बिकॉज थ्रू दीज एविडेंसेस ऑफ चेंज ऑफ मैटर द यू कैन मेक आउट दैट दे डू रिमेम्बर थिंग्स. एंड वेरी ऑफन यू गो टू अ टेम्पल, वहां पर भी आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं. वहां पर जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम देयर, और उधर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, विशेज मांगी हैं. तो जब आप जाते हो तो यू ऑटोमेटिकली गेट सम सुकून मिलता है. तो मैटर एक्चुअली रिमेम्बर करता है कुछ चीज, और वो हमारे को ट्रांसमिट करता है साइलेंटली. और फिर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरे आर्ट वर्क है, उसमें देखो अंदर और पूछो कि इसमें क्या था, ये क्या था पहले और अभी क्या बन गया है. क्योंकि ना मैंने ये कपड़ा जौन सा है, ये मैंने अपने आप बनाया है. ये बनाया है इस वेस्ट सिल्क का, और वेस्ट सिल्क बहुत फ्रेजाइल होता है. सो मैं दिखाना चाहती थी कि मेमोरी भी बहुत नाजुक है चीज़ों की, ये सब चीज़ों की मेमोरी, सब मेमोरी फ्रेजाइल है. और ये सब मेरे आर्टवर्क में मैं नाजुकपन दिखाना चाहती थी. तो इसीलिए मैंने ऑर्गेन्जा यूज़ किया है क्लॉथ में, डबल ट्रिपल लेयर के, काफ़ी लेयर्स के ऑर्गेन्जा किए हैं, और फिर हैंड स्टिचिंग करी है, और वो भी नाजुक दिखा रही है. और फिर ये सारी चीज़ें आप जब सब तरफ से देखोगे तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्रिजिलिटी या नाजुकपन है. तो मैंने ये सब चीज़ें जो फेंकी हुई चीज़ें थी उनको मैं ट्रांसफॉर्म करके आर्ट में लाना चाहती थी, ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे को मैटर जो होता है, चीज़ें जो होती हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए. जैसे जापानीज कल्चर में भी है, कुछ भी ओल्ड हो जाता है ना उसको रिस्पेक्ट करते हैं. तो पहला आर्टवर्क है ट्रेसेस ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग्स काफ़ी पूरी हैं, इमेजेस कंप्लीट. उसके बाद मतलब टू क्रिएट मेमोरी मैंने उनको थोड़ा सा डिजॉल्व किया है. ये डिजॉल्व किया है बाय बर्निंग, बाय स्टिचिंग, बाय यू नो फोटोग्राफिकली ट्रांसफरिंग थिंग्स.

0: अनुपस्थिति की हाजिरी। अभी आपने ये लघु प्रस्तुति सुनी। सौजन्य नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुपस्थिति को रंग और आकार देना आसान नहीं, पर अब हम चलते हैं मौजूदगी की ओर। एक ऐसी हरी मौजूदगी की ओर जो शहर की छतों पर उग रही है, और इसी निजी हरियाली के ठिकाने पर आधारित है हमारा लघु रूपक छत पर उगती जिंदगी।
1: सुबह सुबह छत का दरवाजा खुलता है
2: और कई मंजिला इमारतों के बीच एक छोटा सा हरा संसार मुस्कुराता है।
1: गमलों में तुलसी, पुराने टब में पुदीना,

0: खाली पेंट के डब्बों में टमाटर,
1: कहीं ड्रमों में मौसमी सब्जियां, कहीं बोतलों में लटकती बेलें।
0: ये छतें अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, मन के ठिकाने हैं।
1: पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो इमारतों को ठंडा रखते हैं, धूल सोखते हैं, बारिश का पानी थामते हैं और शहरी गर्मी को घटाने में मदद करते हैं।
0: और सबसे बड़ी बात, ये हमें धैर्य सिखाते हैं, बीज रोपकर इंतजार करना, उस दौर में जब हर चीज इंस्टेंट है।
1: शुरुआत सिर्फ एक गमले से ही हो सकती है।
0: धूप कितनी आती है ये देखिए, हल्की मिट्टी, गोबर की खाद और रसोई का जैविक कचरा, और छत की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।
1: कंक्रीट के इस जंगल में अपना एक पेड़, अपना एक फूल, अपना एक छोटा आसमान। प्रसिद्ध अर्बन गार्डनर किशि अरोड़ा कहती हैं,
2: अगर आपके पास कोई भी पौधा नहीं है तब भी आप एक गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बीज पहले से ही होते हैं, किचन के अंदर हमेशा बीज होते हैं। आप अपना नमकदानी खोलिए, आपको उसी में 3 बीज मिल जाएंगे, धनिया, मेथी और राई, उसी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर वो नहीं तो टमाटर है, और टमाटर नहीं तो खीरा है। अगर आप इनकी सिर्फ एक स्लाइसेस काट के मिट्टी में लगा के गाड़ देंगे, आई प्रोमिस यू एक सैपलिंग निकलेगा उसके अंदर से। तो हमको बीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर के अंदर ही है। शुरुआत में सबसे पहले 2 चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए आपके घर में सूरज की किरणें किस तरफ गिरती हैं। अगर आपकी बालकनी है, सोचिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तब तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे दोनों वर्जन होंगे, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बट लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि आप एक घर में हैं जहां बालकनीज हैं, तो आप तो पहले देखिए कि आपके सूरज कितना आता है। अगर खूब धूप आती है तो धूप वाले पौधे रखेंगे, फूल वाले पौधे रखेंगे, और अगर छाया वाला है तो छाये वाले भी पौधे हैं, हर तरीके के पौधे होते हैं। तो पहले सूरज की किरणें कितनी आती हैं, एंड दूसरी चीज मिट्टी बनाना, जो मुझे लगता है हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं करना चाहिए वो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, वहां के माली से बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए और एक कट्टा मिट्टी लेकर आइए, और उस मिट्टी के अंदर आप अपने घर के थोड़े बेसिक मसाले डालिए, जैसे हल्दी और जरा सा दालचीनी का पाउडर और जरा सा काली मिर्ची, की कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। घर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं, पर हम उसे देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी, धूप का जब ध्यान रख लें, उसके बाद आप पौधा लगाएं। धूप के जगह अगर मिल रही है तो वहां पे धूप के पौधे, बहुत धूप के पौधे होते हैं, और नहीं तो फिर इनडोर पौधे, छाए वाले, वो लगाएं। और मिट्टी में जब आप कभी घर में खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा याद रखिए कि घर में हमारे जितने भी खाने के छिलके होते हैं उनकी कॉम्पोस्ट हमें बनानी चाहिए। खाद बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में किचन है और वहां पे कुछ भी खाना बन रहा है तो 2 चीजें, वहां पे जितने भी खाने के चीजें जो आप फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, प्लीज उसे मत फेंकिए। घर में हर किसी के एक दूध का बर्तन होता है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, आप उसमें कलेक्ट करिए एक दिन का। तो जैसे मेरे घर में सब्जियां बनी, एंड्स, ट्रिमिंग्स होता है, कुछ होता है जिसे हम ग्रीन पार्ट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक एक डेफिनेशन बता रही हूं। मैं यहां पे नींबू हमेशा अलग कर देती हूं कि मैं अपने नींबुओं से एंजाइम्स बनाती हूं। तो पहली बात यह है कि जो भी खाने का जितना भी वेस्ट होता है डस्टबिन में मत डालिए, प्लीज एक डब्बे में इकट्ठा करिए। दूसरी चीज, घर में हर किसी के एक ढक्कन वाली बाल्टी जरूर होती है, वो बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के नीचे एक या तो टब रख दीजिए, एक ट्रे रख दीजिए, बड़ी थाल रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दीजिए नीचे कि आप जब उस बाल्टी में छेद कराएंगे कारपेंटर से, चारों तरफ छेद करा लीजिए एयर फ्लो के लिए। हम उस बाल्टी में छेद करा रहे हैं चारों तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले अपने खाने का जो भी हमारा ट्रिमिंग्स होती है वो डालते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन पार्ट हुआ, फिर डालते हैं हम कार्बन पार्ट, जितने भी सूखी हुई चीजें होती हैं। कहीं से डिलीवरी आती है चेक करिए, अगर वो पेपर कार्डबोर्ड रिसाइक्लेबल है तो उसको फाड़िए, छोटा छोटा करिए, जितने सूखे पत्ते गिर, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ये पत्ते डालिए, इसे हम कार्बन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कर रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन का ऑल्टरनेटिव लेयर। पहले हमने खूब सारा नीचे ग्रीन ये ट्रिमिंग्स डाल दिया, फिर ब्राउन कार्बन डालिए, आपने ये ऑल्टरनेटिव लेयर बनाई और इस पे हल्का सा पानी का छिड़काव करा और फिर लास्ट में कार्बन डाल दिया और ढक दिया। थोड़े टाइम में ये कॉम्पोस्ट बन जाता है। इसको हिलाते रहना डेली और इसको एक थोड़ा सा शेडी डार्क सेमी शेड एरिया में जहां पे आपको लगता है थोड़ा अलग कर सकते हैं उसे कर दीजिए, जिससे कि कई लोगों को जैसे रिगली चीजों से इनसे के अंदर लगेंगी थोड़े कीड़े जो अच्छे होते हैं हमारे लिए बहुत, तो इसको थोड़ा सा कोने में करिए और ये डेली फॉलो करिए तो आपके पास कॉम्पोस्ट थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। नहीं बनाना चाहते कॉम्पोस्ट और आपको थोड़ा अजीब लगता है तो जिस गमले में या जगह पे

0: बायोडाइवर्स एरिया है। मेरे छत पे पेरेनियल्स हैं जो पूरे साल उगते हैं, थोड़े ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सब्जियां हैं, सीजनल हैं, सीजनल फूल हैं। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, एक गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है क्योंकि इस मौसम में प्रति मच सब कुछ उगता है। गर्मी से हम थोड़ा परेशान होते हैं, बट ये मौसम बहुत अच्छे वाला मौसम है जहां धूप भी होती है और एक हल्की सी ठंडक भी होती है रात में। एक चीज जो मैं अपने गार्डन में ऊपर फॉलो करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मुझे पेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चेन है जो हमको जिस दिन समझ आ गई तो हम शायद इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। अगर छिपकली है तो वो एक कीड़े को खाती है तो वो कीड़ा उसका खाना बनता है और वो हमारे को उस कीड़े से बचाती है। तो ये एक चेन है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसको एक्चुअली रहने देना चाहिए। जितने बर्ड्स इंसेक्ट्स आपके टेरेस पे होंगे उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा, उतना अच्छा फ्लोरा फौना होगा और वो बहुत हेल्प करता है पौधों को खुश रहने में। ये ना सिर्फ मेरे को खाना और रिटर्न में हर डेली कुछ ना कुछ देता है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा खुश रखता है। मतलब मुझे मुझे शायद अब इंसान इतने पसंद नहीं है जितना मुझे पौधे पसंद है।
1: ये शहर के बीच प्रकृति के लिए बचाई गई एक छोटी सी जगह है
2: और शायद ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जीवन के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति।
1: छत पर उगती जिंदगी के साथ संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।

हरियाली की इस बात के बाद अब पतझड़ का वो हिस्सा जब हम उन्हें याद करते हैं जो जाकर भी कहीं नहीं गए। कुछ जीवन समय से बड़े होते हैं, कुछ राग रंग शब्द अपने रचयिता के जाने के बाद भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में बजते खिलते और दर्ज होते रहते हैं। आज के स्मृति शेष में हम याद कर रहे हैं भारतीय कला संस्कृति की कुछ ऐसी विभूतियों को। सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर, जिनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की परंपरा, अनुशासन और भाव संपन्नता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। उस्ताद अब्दुल करीम खान, जिनकी गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर की ऐसी कोमल और भावपूर्ण दुनिया रची जिसकी छाप आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक कल्पना को आधुनिक चित्रकला के माध्यम से एक बिल्कुल नई दृश्य भाषा दी। उस्ताद अली अकबर खान, सरोद का वो महान साधक जिनकी साधना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के मंचों तक पहुंचाया। बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में गजल ठुमरी और दादरा केवल संगीत नहीं एक पूरा भाव जगत बन जाते थे। इन सभी को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक स्मृति को फिर से सुनना है, गुनना है। संस्कृति भारती के इस अंक का समापन हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। बीती 8 अक्टूबर को हिंदी और मराठी रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस फानी दुनिया से गुजर गए। उनकी उम्र 75 साल की थी। ২০১৩ में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाना को सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं याद किया जाएगा, सूखे से जूझते किसानों के लिए काम हो या करगिल युद्ध के समय सैनिकों के बीच होना, और हाल ही में सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना। उनके संवादों की धार हमें हमेशा याद रहेगी, और ये भी कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने कहे को जमीन पर निभाते थे। कला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, चाहे वो चीख में हो या खामोशी में। नाना पाटेकर ने ये बार बार साबित किया। पत्रिका की ओर से हम इस महान कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर पर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में 15 लोगों की मौत और कल इंदौर में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
1: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अधिस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों को याद किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली।
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि पूरे अफ्रीका में भारत के सहयोग से 4.5 अरब डॉलर की लागत वाली 220 से ज्यादा विकास परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। यह हमला कैप्टन स्मिथ मच्छर पर किया गया था। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ मच्छर पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सोमवार से साइप्रस और ग्रीस का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग जैसे मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 12 और 13 अक्टूबर को साइप्रस की यात्रा के दौरान श्री सिंह साइप्रस के रक्षा मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक करेंगे। इस यात्रा से विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग सशक्त होने की आशा है। ग्रीस में रक्षा सचिव वरिष्ठ रक्षा और सैन्य नेतृत्व के साथ चार विमर्श करेंगे। इस यात्रा का काफी महत्व है। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत अपने सहयोगियों के साथ रक्षा और सामरिक सहयोगों को और सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोस और उसके परे घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्ग

0: दर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और राजनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ देश को विश्व से अलग थलग करना नहीं है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के लिए घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिज़्या के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्षों से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। यह समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस फैसले की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। यूक्रेन के हमलों से रूस की तेल रिफाइनरियों में उत्पादन प्रभावित हुआ और इस कारण डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए। वहीं यमन के ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती द्वारा सऊदी अरब में किए गए हमलों में ईंधन आपूर्ति को और भी बाधित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस तुरंत 300,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। इसके बाद नवंबर में 500,000 टन, उसके बाद 1 मिलियन टन और रूसी रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त 3 मिलियन टन की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने अमेरिका के किसानों, पशुपालकों और ट्रक चालकों के लिए ईंधन की लागत कम करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: पाकिस्तान में पिछले एक दशक में दर्ज ईश निंदा मामलों का रिकॉर्ड आपराधिक कानून के अंतर्गत धार्मिक आरोपों से मानवीय जीवन पर खतरे को उजागर करता है। इस वर्ष इस तरह के मामलों की संख्या और बढ़ गई है। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे आरोप फुसफुसाहट से शुरू होकर कारावास, मृत्युदंड या परिवारों के घरों के बाहर भीड़ के जमावड़े में बदल सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू और अहमदी समुदायों के लिए खतरा कानून के बाहर काम करने वाले चरम पंथियों से कहीं अधिक व्यापक है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के इशनिंदा प्रावधानों का बार बार व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद और अन्य प्रकार की सामाजिक शत्रुता को निपटाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। ईसाई, हिंदू और अहमदी समुदायों से जुड़े मामले दर्शाते हैं कि कैसे धार्मिक आरोप गिरफ्तारी, कारावास, मृत्युदंड या भीड़ हिंसा में परिवर्तित हो सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। कल शाम रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया था। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बरहम में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर पर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोगों की मौत और कल इंदौर में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Stay tuned for the news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।

0: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी एब्राहम। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for reform of the UN Security Council, saying India and Africa cannot remain underrepresented in global decision-making. Addressing a gathering at the Adwa Victory Memorial Museum in Ethiopian capital Addis Ababa, Dr. Jaishankar called for fair African representation in both permanent and non-permanent membership and recalled India's efforts during its 2023 G20 presidency to secure